0: ऐसा मुझे तू लाख बशर अपने को कहे कुछ और गुमाने आलम है
1: क्यों
0: जलवे तेरे उस वक्त भी थे
1: जलवे

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
2: हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM247365। Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर शिकोहनाज, एसोसिएट प्रोफेसर, बुध 10 जून 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। Us on facebook.com/FM247365

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग।
7: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
8: को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
9: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा।
10: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
13: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
14: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
15: एक दो तीन ये लो।

0: ये लो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: 100 FM।
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
8: This program is brought to you by
9: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
10: And Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी।
11: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
13: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: एंड
15: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
6: एंड
16: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
17: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
18: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
20: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
21: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
22: ہماری ذمہ داری ہے۔
23: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
18: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
24: Like us on facebook.com/FM247365.
25: FM247365.
26: FM100.
27: 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
28: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: कूल किंग. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता AC.
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
9: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
1: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: And
4: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: And
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
1: And
13: Life Boy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
4: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
6: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
11: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
12: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
13: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
6: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
7: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: एंड तूफान है
8: And Life Boy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
12: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग,
6: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL
3: and अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
4: and जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: and
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: and
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: and
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: and
8: तूफान है
0: And
9: Life Boy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान.
11: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
13: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
14: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
15: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया मैं नहीं बचा.
16: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई सानू मारिया सानू कुटिया.
13: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
17: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
13: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
18: FM 247
8: 1-800-947-365.
18: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
19: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
18: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
20: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
21: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
18: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں.
20: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
21: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
20: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے
18: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
21: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
18: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में ये मेरा है टेक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it.

0: धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया।
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaar, wahan HBL.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
4: 100 FM।
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، PDMA، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
8: Kisne kaha tha paise

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप ए सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप ए सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: HPL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HPL ब्रांच। HPL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
7: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
8: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
9: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
11: And लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: And अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
14: And तूफान है हर जीत की पहचान है।
0: And लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
15: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 100 FM।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 100 FM।
6: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
8: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर शिकोहनाज एसोसिएट प्रोफेसर, बुध 10 जून 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम।
2: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहाँ HBL।
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश।
6: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
9: एंड तूफान है हर जीत की पहचान है।
10: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
11: खवातीनो हजरात मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जाहिर कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस समल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय

0: By Jaskesh.
1: And
0: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: Al Habib current plus account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
1: And
4: toofan hai ye. Har jeet ki pehchan hai ye.
1: And
0: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
5: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो। अहमद हटो वहां से।
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
9: 100 FM।
10: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
10: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL
3: 100 FM.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: किसने कहा था पैसे बचा।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर रब्ता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
8: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. Back to back music on the Hot 100.

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू ही जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है।

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL
4: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
5: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
7: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
5: एंड डेटॉल कूल सो ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
6: एंड तूफान है
8: Like us on facebook.com/FM247365
9: FM 247 365 100 FM.
10: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
11: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
12: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
3: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
13: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम,
2: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
3: And HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
4: And Jo Chahe Khareedo, Paise Aaram Se De Do, Ye Lo Buy Just Cash.
5: And Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.
6: And Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
7: And Al Habib Current Plus Account, Bharosa Bhi, Raftar Bhi, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
5: And Dettol Cool Soap, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur.

your location for maximum music.

Yes, my friends, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है तरीकाकार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो उसके लिए आपने करना यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप करना है और इसे सेंड कर देना है 3636 पे. तो भाई इस तरीकाकार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं. एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे. तो भाई ये जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये बिल्कुल ठीक है या ऐसा नहीं है, क्या सूरत हाल है भाई? ये तो आप ही जानते हैं और आप ही की जुबानी हम भी सुनेंगे आपसे. तो आपने जल्दी से हमें मैसेज करना है, अपनी हाजिरी लगानी है, हमें बताना है कि इस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं. इस वक्त आप अपने घर में हैं, इस वक्त आप सफर में हैं, ऑफिस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं. अच्छा, सोचने का भी सिलसिला हर वक्त हमारे साथ चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम सोच ही रहे होते हैं, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तब करना है. सो ये वाला सिलसिला भी जारी रहता है. सो एक्चुअली में आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं. और ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है? जी हाँ, इस हफ्ते में दाखिल हुए हमें 3 रोज हो चुके हैं. और इस हफ्ते की जहां तक बात है तो बात यह है कि भाई इस हफ्ते शदीद तरीन गर्मी पड़ने वाली है. और जबकि जुमरात और जुम्मे को कराची का दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा होगा. इस सब की मालूमात तो हमने आपको पीर वाले दिन ही दे दी थी, लेकिन डोंट वरी, हम आपको वक्फे वक्फे से सब कुछ बताते रहेंगे कि किन दिनों में आपने एहतियात जरा ज्यादा करनी है, किस तरह अपना ख्याल रखना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आरजे फातिमा खान आपके साथ मौजूद हैं, तो आपको मालूमात तो मिलती रहेगी भाई. तो ये बात तो तय है, यानी कि फिक्र की तो कोई बात है ही नहीं. तो चलें जी, क्या कहते हैं, एक और ट्रैक की जानिब चलते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन. तो एक और ट्रैक की जानिब हम चल के आते हैं वापस कुछ ही देर में. ब्रेक को शामिल करेंगे, आपके मैसेज को शामिल करेंगे और फिर आपसे मजीद करेंगे बातें.

0: तो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे. मैंने कहा भाई ठीक है, दोपहर का वक्त है, ये वक्त जरा पीसफुल टाइम होना चाहिए, तो मैंने कहा चलो जरा पीसफुल से ट्रैक्स को शामिल करते हैं और आपको एंजॉय कराते हैं. अच्छा भाई, दिनों के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसी के साथ साथ एक और दिन मनाया जाता है और ये दिन से हम सबका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो कि है नेशनल बॉल पॉइंट पेन डे. ओ माय गॉड, आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जिसने इस बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल ना किया होगा. बिल्कुल, इस वक्त तो मिलकर मेरे हाथ में भी मौजूद है क्योंकि इसके बगैर तो हम सबकी जिंदगी चल ही नहीं सकती. लेकिन इस समय मैं ना सबसे ज्यादा हैरान तब होती हूं कि जिन लोगों को बॉल पॉइंट से जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी रहती है, बिकॉज इसमें अच्छी राइटिंग को मेंटेन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन जो लोग बॉल पॉइंट से लिखकर भी अपनी राइटिंग को बड़ा अच्छा रखते हैं ना यार, मैं कहती हूं दिस इज सो गुड एंड सो इम्प्रेसिव. क्योंकि बॉल पेन से लिखते हुए हमेशा अक्सर औकात ना ये मसला जरूर होता है कि जी राइटिंग अच्छी नहीं होती, राइटिंग ना जरा सी खराब हो जाती है या वो मजा नहीं आता जो हम एक नॉर्मली इंक पेन या फिर जेल पेन से लिख रहे होते हैं. तो बस बॉल पॉइंट से एक ये मुझे मसला हमेशा से लगता है, बट इसके बगैर ना यार कोई काम पॉसिबल है ही नहीं. मुझे लगता है कि बैग में सबसे जरूरी तरीन चीज जो है ना वो ये बॉल पेन है. मेरा तो बैग बॉल पेन के बगैर इनकम्प्लीट है और जहां भी मेरा ये पेन कहीं खत्म हो जाता है, इधर उधर जाता है, मैं तो फौरन जाके कहती हूँ भाई मुझे एक पेन चाहिए, बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग विदाउट पेन. तो पेन और एक कोई नोट या डायरी मेरे पास हर वक्त रहती है, कुछ ना कुछ लिखने के लिए या कोई ना कोई बात याद आए तो उसको नोट डाउन करने के लिए. लाख आपके पास मोबाइल फोन सही, लेकिन जो बात बॉल पेन और एक डायरी में या नोट्स में नोट करने की है ना, वो बात कहीं किसी और में नहीं है. तो क्या ये आदत आपकी भी है या नहीं? भाई जब से मोबाइल फोन आया है, पेन और डायरी को कर दिया है साइड में, अब हर चीज मोबाइल पर लिख लेते हैं या जितना भी मोबाइल पर लिख लें, लेकिन जो बात ये बॉल पेन और डायरी की है ना वो तो कहीं भी नहीं है. तो क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं बॉल पॉइंट को अभी भी? तो मैं जरूर बताया, एंड आई एम श्योर कि अभी भी तभी भी नहीं, मतलब एवरीबडी इज यूजिंग इट, ये सब ही इस्तेमाल करते हैं. खैर जी, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, आप हमें जरूर बताएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक.
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो भागो.
2: अहमद हटो वहां से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
5: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
6: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
7: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: FM247365 FM. 247-365.

नाजी हसन का कोई भी ट्रैक सुनो ना तो मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। मुझे तो नाजी हसन के भाई सारे ही ट्रैक्स बहुत ज्यादा पसंद हैं, और नाजी हसन का जब भी जो भी आप ट्रैक सुने ना, आप उस रंग में रंग जाते हैं। मतलब इतना मजा आपको आता है, इतने मजे मजे के ट्रैक जो हैं वो नाजी हसन ने गा दिए हैं कि भाई जब भी सुनो ना मजा ही दुबाला हो जाता है। खैर जी, हमारे पास मैसेजेस का सिलसिला भी जारी हो गया, तो शामिल करते हैं। कहते हैं, सलाम, आपकी ग्रेट शो, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया। इसी के साथ साथ हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हैं जी हम। कहते हैं, आई एम फाइन, यस। कहते हैं कि आप लिसनर्स को वाटर, पानी पीने का कहती हैं, लिसनर्स कह रहे हैं कि आप भी तो वाटर इनटेक का ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको पता है मैं वैसे आम दिनों में ज्यादा पानी पीती थी या पी लिया करती थी, लेकिन जब से ये है ना कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और ये तो मुझसे इन्हीं दिनों में पता नहीं क्यों पानी नहीं पिया जा रहा है, और मैं खुद भी अपनी इस मसले से परेशान हो गई हूँ कि वाई वाई वाई। सो थैंक यू मुझे भी याद कराने के लिए। बिल्कुल भाई, इसलिए कि फौरन बाद में भी पानी पीऊंगी। कहते हैं जी, तोरी मीन्स तुरैया है लंच में, जबरदस्त हो गया। कहते हैं, आपका लंच बॉल पॉइंट मैं हमेशा साथ रखता हूँ, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ऑल राइट, अच्छा जी, आप ये वही वाला ट्रैक कह रहे हैं आज से, यानी कि इश्क का है मौसम। बिल्कुल ठीक है जी, बॉल पॉइंट देखें जी, रशीद खान भी अपने साथ रखते हैं। आई थिंक एवरीबडी, हर कोई अपने साथ रखता है, अपने बैग में रखता है। ख्वातीन तो ऑब्वियसली अपने बैग में रखती हैं, तो उनके लिए तो आसानी रहती है। और मेरे ख्याल से मर्द हज़रात जहां भी काम करते हैं, वो अपनी ड्राज में या वहां पे कोई कप रखा होता है जिसमें ये सारी चीजें रखी हुई होती हैं, बिकॉज बॉल पॉइंट के बगैर तो भाई काम इज इनकम्प्लीट ना, क्योंकि ये आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। और मुझे तो हर चीज ना रिटर्न फॉर्म में लिखना बहुत अच्छी लगती है, कि मैं कहती हूँ लिखकर जरा आपके पास रहे, आपको याद रहता है। और मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं या कुछ, तो उसके साथ डेट भी जरूर मेंशन किया करें, बिकॉज अक्सर औकात जब आप अपनी कोई पुरानी डायरी खोलते हैं या पुरानी चीजों को याद करते हैं ना, तो आप याद करे होते हैं, अच्छा हाँ यार, ये तब की बात है, अच्छा इतना टाइम हो गया। और आजकल तो वक्त वैसे ही इतनी तेजी से गुजर रहा है, ये बड़ी हैरत होती है कि अच्छा ये बात 2022 में हुई थी, अच्छा अभी की बात लगती है 23 में हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल है भाई आजकल, कि हम सोचते हैं कि कितना टाइम गुजर गया है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यार बताओ जरा, ये सूरत हाल चल रही है, इतना सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमें लगता है कि जी अभी की बात है, क्योंकि आजकल वक्त कुछ ज्यादा ही तेजी से गुजर रहा है। इसके पीछे हमारा अपना हाथ भी है, क्योंकि हम भी जरूरत से ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं। तो इस मसरूफियत में अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सबसे हेलो हाय जरूर रखें। और भाई, गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है, तो जरा गुस्से पर भी काबू रखें। तो ये तो कुछ ऐसे पैगामात हैं जो कि हम आपको वक्फे वक्फे से देते रहते हैं और देते रहेंगे, ये तो डील डन है जी। और इसी के साथ साथ चलते हैं हम एक अदर ट्रैक की जानिब। सज्जाद अली की आवाज करते हैं शामिल। भाई ऐसा लग रहा है कि सज्जाद अली की आवाज को शामिल नहीं किया, तो चलें जी। सैड सॉन्ग लग रहा है सज्जाद अली का, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई सैड है तो उसको हम ये ट्रैक डेडिकेट करते हैं, और इसके बाद हम आते हैं वापस लगाया दिल।

0: जी, तो सजाद अली की आवाज आप लोग सब सुन रहे थे और उसी के साथ साथ अब हम वापस आ चुके हैं और हम वापस आ तो चुके हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम जा भी रहे हैं क्योंकि ब्रेक मौजूद है, तो ब्रेक के जाने पे जाना जरूरी है। लेकिन मैंने कहा भाई जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार के जरिए आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैसेज करें, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं और हमें बताएं कि जिस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं और हाजिरी लगाने का यही है तरीका है कार। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो जल्दी से मैसेज करें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: इट्स 12:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय Phoenix Batteries।
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja।
3: Azra behan, zara baat to suno। Hatu piche, bhago। Ahmed, hatu wahan se।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

यस एवरीबॉडी, सो आलमगीर की आवाज भी हमने शामिल कर ली. मैंने कहा भाई आलमगीर भी जो है ना वो हमारे लिसनर्स के बड़े फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलो जी उनकी आवाज भी शामिल रखते हैं. उमूमन तौर पर हमारी लिसनर सायरा जो हैं वो हमेशा कहती हैं कि जी आलमगीर का कोई ट्रैक लगा दें, और आलमगीर के भी भाई बड़े जबरदस्त ट्रैक्स हैं कि उसमें से भी आपको चूज करने में जरा डिफिकल्टी होती है कि कौन सा वाला शामिल करें, ये वाला या वो वाला, बिकॉज जो भी सुने वो बड़े अच्छे हैं. जैसे कि मुझे नाज़िया हसन के गाने बड़े अच्छे लगते हैं कि वो जब भी आप सुने ना आपको बड़ा मजा आता है, तो आलमगीर के गाने भी ऐसे हैं. मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, साथ ही साथ भाई इन ट्रैक्स को भी शामिल करते हैं और जरा दर्जा हरारत भी देखते हैं इस वक्त कराची का कि क्या ताजा तरीन सूरत हाल है. भाई आज तो है वेडनेसडे, और जो असल जो हीट वेव के जो दिन है वो है थर्सडे और फ्राइडे. जी हाँ, थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो एक्चुअली में टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्रीज तक टच करेगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर रियल फील्स लाइक कितना होगा. इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 37 है जबकि रियल फील्स लाइक इज 42. जी हाँ, इस वक्त अभी 37 है तो रियल फील्स लाइक इज 42, तो सोचें जब एक्चुअली में दर्जा हरारत 43 होगा तो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत कितना होगा. तो जी हाँ, गर्मी की शिद्दत तो बरकरार है, आपने रखना है अपना भरपूर ख्याल, पिए जी खूब सारा पानी. वैसे इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो यही है कि आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, हल्के रंगों का इस्तेमाल करना है. इस वक्त डार्क कलर्स बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि डार्क कलर्स जो है वो इस वक्त पहनना बिल्कुल ठीक नहीं है. धूप की शिद्दत बरकरार है, और जो एक कल के हवाले से ये भी खबर है, बल्कि कल की नहीं आज के हवाले से ये खबर भी है कि समंदरी हवाएं चलने के बावजूद भी महसूस नहीं होंगी, बल्कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही रहेगा. तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना भरपूर ख्याल रखना है, और हम आपको वक्फे वक्फे से ये भी बताते रहेंगे कि जी पानी पी लें, बहुत देर हो गई है आपने पानी नहीं पिया, अपना ख्याल रखें. इस वक्त जो है वो आप गजा भी थोड़ी हल्की लें, इस वक्त जो है वो ज्यादा तेल वाले सालन और इस तरह की चीजों को आप जरा अवॉइड करें, बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. फल मौजूद हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप फल खाएं, तरबूज है, तरबूज इज वेरी गुड, आप वो चीजें खाएं, और कोशिश करें कि इस दौरान बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत कितनी है और इस गर्मी की शिद्दत में चीजें सही नहीं रहती, चीजें खराब हो जाती हैं, तो प्लीज बाहर का खाना अवॉइड करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने इतना ख्याल रखना है, उसी के साथ साथ हम ट्रैक की जाने भी चलते हैं क्योंकि भाई बातों का सिलसिला तो जारी है लेकिन ट्रैक तो बनता है. तो चले जी ट्रैक की जाने जाते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: 247-265.
1: FM 247-365.
0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो
3: अहमद हटो वहां से
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
5: देख के नहीं चलाता क्या
6: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: FM 24/7 365 توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Yes everybody, so welcome back. हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच।

तो भाई भूख लग रही है, तो जरा जानते हैं कि मेरे लिसनर्स के लंच में इस वक्त क्या मौजूद है। तो हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम, कैसी हैं, तबीयत कैसी है, बहुत सारी दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच जरीन नूर। तबीयत भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। जरीन नूर कहती हैं कि मेरे पास भी बॉल पेन और नोटबुक होती है, कब काम आ जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, आपके पास जरूर होनी चाहिए। अक्सर औकात जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं है या कोई चीज आपको नोट करनी है, सो बिल्कुल भाई एक नोट पैड आप लोग जरूर रखें अपने पास, और उसी के साथ साथ एक बॉल पेन। ये ना तो ज्यादा जगह घेरता है ना इसका ज्यादा वजन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज आप लोग इसे जरूर रखा करें। जरीनूर कहती हैं कि आज खाने में दाल चावल और सैलेड है। वाओ, सेम टू सेम, मेरे लंच में भी आज एग्जैक्टली यही चीजें हैं। और भाई हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हो, क्या हाल हैं? कहती हैं आज लंच में चपली कबाब और फ्राई लौकी है। यमी। कहती हैं प्लीज प्ले रहीम शाह सॉन्ग डेडिकेट टू यू, लव यू। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, रहीम शाह की जो डाई हार्ट फैन है ना, वो है लुक वर्ल्ड, क्योंकि मैं जब भी रहीम शाह का ट्रैक शामिल करती हूँ वो मैं लुक वर्ल्ड के लिए करती हूँ। वैसे ऐसी बात नहीं है, हम भी करते हैं, लेकिन जो असल मैंने जो एक फैन देखा है ना रहीम शाह का, वो भाई लुक वर्ल्ड है, मतलब डाई हार्ट फैन है कि रहीम शाह का बस ट्रैक ही। कहती है कि आप जरूर शामिल करें, और बिल्कुल इनकी वजह से ही मैं रहीम शाह का अक्सर औकात होता है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं ऑब्वियसली, तो अगर रहीम शाह का मैं ट्रैक बहुत टाइम से शामिल करना भूल जाती हूँ ना, तो लुक वर्ल्ड हमें जरूर याद दिला देती है कि बहुत दिन हो गए आपने जो है वो कोई रहीम शाह का ट्रैक नहीं शामिल किया, तो डन होती है डील। चलें जी, तो सबसे पहले हम रहीम शाह के ट्रैक के जाने भी चलते हैं, और इसके बाद अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो एंजॉय।

0: सो वी बड़ा एंजॉय किया हमने इस ट्रैक को जो आपने हमें डेडिकेट किया था, तो थैंक यू सो मच. कहती है थैंक यू फॉर माय लवली स्वीट एंड ब्यूटीफुल आरजे. अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. आप भी अपना भरपूर ख्याल रखें, अपना ख्याल रखो, हंसती मुस्कुराती रहो, खुश रहो एंड हैव लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ. अच्छा भाई, तो अभी वैसे तो हमने मौसम के हवाले से आपको आगाही फराम कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरे पास से भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है, तो उस हवाले से भी आपको बताते चलें कि शहर में जारी गर्मी की शिद्दत में आज कुछ हद तक मजीद इजाफा देखा गया है. शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत नमी का तनासब से ज्यादा होने की वजह से 50 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है. जी, आने वाले घंटों में माई गॉड दिस इज वेरी स्कैरी भाई, आने वाले घंटों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री से तजावज कर सकता है. शहर में कल से हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुमकिन है और दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है अगले हफ्ते से शहर में शुमाली. फिलहाल ओके जी, मौसम में बेहतरी हो सकती है अगले हफ्ते. ओके जी, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह. अगले हफ्ते मैं आपको ये खबर सुना रही हूं कि जी हाँ, मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है. मजा ही आ जाए भाई, अब तो मेरा दिल तरस रहा है कि ये खबर आप लोगों को फराम की जाए कि जी कराची में बारिश होने वाली है या मौसम अबर आरूद रहने वाला है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गुड न्यूज, ये कब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सारी ना ये डेंजरस वेदर वाली खबरें शेयर कर रही हूं कि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई. और अभी काफी टाइम बाद कराची में वाली जो है ना ये जबरदस्त गर्मी आई है. और सिर्फ कराची की बात हम क्यों करें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मी है. सिंध के दीगर शहरों में बहुत बुरा हाल है, पंजाब में इस वक्त बहुत बुरा हाल है. लेकिन फिर भी लाहौर वगैरह में बस एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जितनी भी गर्मी हो ना वहां बारिश हो जाती है तो जरा सा बैलेंस हो जाता है. लेकिन वहां की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हब्स बहुत रहता है वहां पर. मैं कभी लाहौर गई नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है यही सब और लाहौर वालों से यही बात सुनी है. लेकिन वहां फिर भी बारिश हो जाती है यार. कराची में ना बस ये चीज एक बड़ी गलत है कि बारिश लेना हमें बड़ा तरसना पड़ता है और जब जाके बारिश होती है तो फिर रोडों का बुरा हाल हो जाता है, तो फिर हमें एक जाने रोना भी पड़ता है. तो भाई बहुत सारे मसले हैं ये. इसलिए बेहतर ये है कि मौसम जो है वो अच्छा रहे, बस दिस इज द ओनली विश जो हम चाहते हैं कि कराची का मौसम बस बेहतर रहे और अल्लाह करे ऐसा ही सूरत हाल रहे. इसी के साथ साथ हम चलते हैं ब्रेक की जानेब, आते हैं वापस ट्रैक के साथ या फिर आपसे लेते हैं खुदाफ़ी. तो जो भी सूरत हाल है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अदद ब्रेक एंड देन विल बी राइट बैक.
1: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर शिकोनाज एसोसिएट प्रोफेसर, बुध 10 जून 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

Yes, everybody. So, program lunch time special ka waqt hua jata hai khatam. Aur inshallah, meri hogi aap logon se mulaqat. Kal phir same place, same time. To aapne rakhna hai apna bharpoor khayal aur haste muskurate rehna hai, khush rehna hai. Ye bahut zaruri cheez hai, bhai. Is cheez par aapne amal karna hai ki ji aap haste muskurate rahein aur khush rahein. Aur garmi ki shiddat barqarar hai, to koi baat nahi ji. Is pe aap gussa na karein. क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है कि जी गर्मी सिर्फ आपके लिए नहीं है, सामने वाले के लिए भी है. तो जी गुस्से से जरा आप परहेज करें, क्योंकि इस गुस्से का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके लातदाद नुकसान है. तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द गुस्सा. ये वो गुस्सा है जो बहुत सारे लोगों की नाक पर होता है, ये वो गुस्सा है जो बहुत सारे लोगों की बातों में होता है, ये वो गुस्सा है जो बहुत सारे लोगों के सर पर हर वक्त सवार रहता है. तो भाई इस गुस्से से आपने ना परहेज करना, ये बहुत जरूरी है. मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उस वक्त रोड पर मौजूद लोगों को जो कि बाइक चला रहे हैं, जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि रोड पर इस वक्त मौजूद है. उस वक्त उन्हें कोई तंग करे ना तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है. लेकिन प्लीज गुस्से से कर लें परहेज, यार कोई फायदा नहीं है ना इसका. और ये पैगाम तो आपको फातिमा खान हमेशा से देती आ रही है कि गुस्से में किए जाने वाले काम या गुस्से में लड़ाई जो है ना, वो फिर बाद में आपको पछतावा होता है. आप कहते हैं यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं गुस्से में था. तो प्लीज ऐसा ना सोचें कि बाद में आपको पछतावा हो, इससे बेहतर है कि आप पहले ही ऐसा कोई काम ना करें. तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है. और लो भैया लाफिज तो हमने पहले ही कर लिया था और इतनी सारी बातें कर ली हैं. तो चलें जी, रखिए अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
8: Us on facebook.com/fm247365 fm247365।
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदनी में तवाजन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: FM 100, 31 साल FM 100, आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
16: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।
17: It's 2 PM. This time check is brought to you by
5: Yellow by Jazz Cash.
3: अभी Jazz Cash app download करो और Yellow के through payment करो।

0: Hello, hello, hello everyone and assalamu alaikum to all of you guys are tuning to FM 100 Pakistan and aap sun rahe hain Oral Health Ki Baat Platinum Pharma ke saath. My name is Jasmine aur janab hum aapko batate chale this show is brought to you by Platinum Pharma aur aap sun rahe hain program Sehatmand Daant Sehatmand Zindagi. So we have Dr. Shikho Naz with us, Associate Professor, BDS, MPH, Research Interest, Public Health, Dental Education, Student Mentorship, Community Dentistry, Behavioral Sciences. So, Janab, aaj hum daanton ki sehat ke hawale se baat karenge. Dr. Shikho Naz hamare saath maujood hain. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Thank you so much, Doctor, for being here. Kaisi hain?
1: Bilkul sahi.
0: अच्छा डॉक्टर साहिबा आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ओरल हेल्थ सही है दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे और अपने लिसनर्स को बताएंगे ये इन्फॉर्मेटिव शो होने वाला है सो पहला सवाल जो मैं आपसे करने वाली हूँ इट इज अबाउट कि बहुत से लोगों को लगता है कि दांतों की सेहत जो है वो सिर्फ ब्रश और फ्लॉसिंग की हद तक महदूद रहती है तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं कि बेसिकली ओरल हेल्थ का हमारी ओवरऑल हेल्थ से क्या ताल्लुक है यानी जो हमारी मुंह की सेहत होती है उसका हमारी तमाम सेहत से क्या ताल्लुक है बताएं हमारे लिसनर्स को
1: बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया माई नेम इज थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं माई नेम इज डॉक्टर शिको नाज आई होल्ड Bachelor of Dental Surgery and Master of Public Health. And I serve as Associate Professor in Hamdard Medical and Dental University Dental Section, Hamdard Dental Hospital, since last 22 years. Mm-hmm. And about my teaching, I am passionate about my teaching, research and student mentorship. I actively guide students in research article, writing, conference, presentation, and academic project. On the behalf of all my teams, and I am very thankful to invite you, and I answer your questions, that oral health is not limited on brushing and flossing.
0: Okay.
1: The mouth is a gateway to the body.
0: Mm-hmm.
1: You got it?

0: you got it. Bacteria from the gum disease can enter the bloodstream and contribute to heart disease, diabetic complication and respiratory infection and adverse pregnancy outcome. Okay, you got it that ke bacteria jo hai hamare paas, wo jab hamare paas aa jata hai hamare blood stream mein, to wo kya karta hai? Acid produce karta hai. And then wo jo hamare paas heart disease hai, koi diabetes ke complications hai, respiratory infection hai, aur pregnancy ke कोई भी आउटकम है, तो हमारा वो बैक्टीरिया उसमें बहुत डिफिकल्टी करता है और इस तरह जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होती है. कीपिंग योर माउथ हेल्प टू प्रोटेक्ट योर होल बॉडी. अगर हमारा मुंह हम प्रॉपर उसको हाइजीन, उसके ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी बॉडी पे कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं होंगे. ओके, यू गॉट इट देन.
1: ओके, सो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं अबाउट ओरल हेल्थ एंड ठीक है, दूसरा सवाल मैं आपसे डॉक्टर साहिबा ये करना चाहूंगी. मोस्टली एक आम ख्याल है कि जैसे ऊपर के दांत जब निकलते हैं, अच्छा दांतों के हवाले से जो है एक तो फिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं. अब जैसे मैं अभी आपसे एक सवाल करने वाली हूं, एक तो फिक्शंस भी होती हैं, मिथ्स भी होती हैं, तो ये एक मिथ वाला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ऊपर के दांत जब निकलते हैं तो कहते हैं कि इससे ना बिनाई बड़ी मुतासिर हो जाती है जब ऊपर के दांत निकल रहे होते हैं, तो कितनी परसेंट इस बात में सच्चाई है कि ऊपर के दांतों से बिनाई मुतासिर होती है? कितना मतलब ऑब्वियसली हमारी बॉडी के हर पार्ट्स का लिंक एक दूसरे के साथ होता है. सो ऐसा है डॉक्टर साहब के ऊपर के दांत निकल रहे तो इससे जो है विजन मुतासिर होता है?
0: थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज कम्प्लीटली मिथ जो आपने कहा. टीथ एंड आईज आर नॉट कनेक्टिकली कनेक्ट एनाटॉमिकली. ठीक है, इससे कोई भी दो राय नहीं है कि हमारे दांत का कनेक्शन जो है आंख से है और हमारी आंख मुतासिर होगी. अलबत्ता रिमूविंग अपर टीथ ओनली अफेक्ट द जॉबोन एंड एडजेसेंट टीथ. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊपर का दांत कोई हम निकाल रहे हैं और वो हमारी डिफिकल्ट एक्सट्रक्शन है कि डिफिकल्टी से निकल रहा है, इम्पैक्टेड है एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर वाली हमारी जो जॉ बोन है वो स्वाइल हो जाती है. ठीक है बेटी, और एडजस्टेंट उसके बराबर वाला दांत जो है वो मुतासिर हो सकता है फॉर द टाइम पीरियड, नेवर द विजन. कभी भी मेरे पास केसेस नहीं आए. मैं 2002 से जो है क्लिनिकल सेटअप लिए बैठी हूं, लेकिन मैंने अक्सर मेरे पास पेशेंट भी यही कहते हैं कि मैडम दांत निकलने से और ये है कि हमारी आईसाइट असर पड़ती है, तो मैं उससे कहती हूं कि बेटा कोई ना कोई हम लोग प्रैक्टिकली करें कि आप बिफोर एक्सट्रैक्शन एक अपना आई चेकअप करवाएं और आफ्टर एक्सट्रक्शन आप अपना आई चेकअप करवाएं, ताकि कोई तो इसमें ऐसा हो कि वो इस मिथ को जो है ना गलत साबित करे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: दीज आर द मिथ ओरिजिनेटेड इन फ्रॉम ओल्ड अनएजुकेटेड बिलीफ था. जब वो मैं कभी कभी मिसाल देती हूँ अपने क्लिनिक पे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने जितने लोग थे, चूंकि मैं चाह रही हूं कि हम लोग ये मेरा मैसेज सबको पहुंचे कि इस तरह के कोई, मैं भी चाह रही हूं और आगे से कोई बिल्ली सामने से चली गई तो शायद आप लोगों ने ये मिस सुनी होगी, काम नहीं होगा.
1: हाँ, रास्ता बिल्ली रास्ता काट गई.
0: बिल्ली रास्ता जी ये सब कॉमन में.
1: अच्छा वो बिल्ली भी, अच्छा काली बिल्ली
0: वो भी ये था कि काली बिल्ली, यानी कि उसको भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि अब शहर पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, शहर कराची में रहती हूँ, तो यहाँ पर काली बिल्ली ब्राउन हर तरह की कैट्स होती हैं. तो वो एक वो मिथ चली आ रही थी और इवन लोग यकीन करें कि एजुकेटेड लोग भी तो वो वापस घर आ जाते थे कि आज हमारे रस्ते
1: आज कोई काम नहीं करेंगे.
0: बिल्कुल बेटा, ये वही वाली मिथ है कि मैंने आंख मेरी आंख की आईसाइट कम हो गई, मैंने ऊपर का दांत या नीचे का दांत निकाला. इट्स टोटली रॉन्ग. इसमें कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई भी हमारी कोई आर्टिकल ऐसा नहीं आ रहा है मेरे पास. इवन मैं आपको रेफरेंसेस देकर भी बताती अगर कोई इसमें सच्चाई होती, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हमारे दांत हमारी विजन को, मेरी आईसाइट को
1: मुतासर करते हैं.
0: सही
1: जबरदस्त. ये एक

Alrighty, everyone, welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan, and the show is called Janie No Radio. My name is Jasmine. आप लोग हमें बिल्कुल messages कर रहे हैं 3636 पर. And हाँ, जब आप थोड़ी सी देर में हम show का topic announce करेंगे. So meanwhile, आप लोग page पे हमें messages कर रहे हैं. हमारे पास समी का message आया है. And Sami, thank you so much for your message. Really appreciated. कहने माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है. और song obvious by Umar Hassan Rahim, please play कर दीजिए. ठीक है, मैं ये गाना देख लेती हूँ. Thank you so much for your message, Sami Sheikh. And MD Siddiqui ने भी हमें मैसेज किया है. Thank you so much for your message. Sweet voice उन्होंने लिखा है, बहुत शुक्रिया. So meanwhile, we are moving on towards another track. The track is Blockbuster. मिलते हैं इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर, और facebook.com/rjasmine पे भी आप इनबॉक्स करते रहिए फॉर योर रिक्वेस्ट. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Genie in Radio. Radio. Genie in Radio. Radio.
1: Jizna, welcome back. So, आप सुन रहे हैं FM 100 Pakistan and बिल्कुल आप हमें messages कर रहे हैं 36364 और जपाल आपने request किया था for the title track of Halla Gulla, so I found it. ये हम आपके लिए play कर रहे हैं and मिलते हैं इस गाने के बाद. और मैसेजेस आप लोग करते रहिए. हमारे पास समी का मैसेज आया है पेज पे. समी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. आपका मैसेज मैंने इंक्लूड कर लिया था पेज पे ही, आपने किया था हमें. मिनाहिल ने हमें मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसी हैं. काली काली जुल्फे, इन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया है. ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी तो हम जयपाल की रिक्वेस्ट की तरफ जाएंगे जब हम वापस आएंगे. इसके बाद मिलते हैं इस गाने के बाद, मैं साथ रहेगा.

जी जनाब, वेलकम बैक. सो आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड हमारे पास मैसेज आया है साइमा का पेज पे. वालेकुम अस्सलाम साइमा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. शो अच्छा है और टाइमिंग्स या वेनसडे थर्सडे टाइमिंग्स हैं, 2 से 4 आप सुन सकती हैं. एंड रिक्वेस्ट इन्होंने कहा है आतिफ असलम का कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दें. चलें ठीक है, आतिफ असलम का मैं कोई अच्छा सा सॉन्ग आपके लिए प्ले कर दूंगी. साइमा थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो गाइज, आप लोग पेज पे भी हमें इनबॉक्स करके बता सकते हैं जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट है, और आप लोग 3636 पर भी मैसेज करके बता सकते हैं जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट है. जयपाल थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. नहीं नहीं बिल्कुल सैड नहीं हूं, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक. दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग कॉल्ड काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Genie in radio. Radio.
1: Your favorite number on my fingertips. Fingertips. Catch your favorite number within no time.
2: No time.
1: Genie in a radio.
2: Genie in a radio.
1: With your very own RJ, Jasmine.
3: Jasmine.
1: Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. The show is called Genie in Our Radio. My name is Jasmine. So you guys are messages me 3636 for and the way it is very easy. Just type KH and then leave space. Your message, your name, your request, or the three three three four. Facebook.com/Archer or Jasmine. Pe aap inbox karke jo bhi aapki request hai, aap log bata sakte hain. And इसी के साथ साथ 3636 पर भी आप लोग मैसेज करके हमें बता सकते हैं. अच्छा, साइमा की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी. उन्होंने कहा था कि आतिफ असलम का सॉन्ग उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, कोई अच्छा सा आतिफ असलम का सॉन्ग प्ले कर दें. सो साइमा, अगर आप सुन रही हैं तो हम आपके लिए आतिफ असलम का कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है वो भी लाइनअप कर लेते हैं एंड आपके लिए प्ले भी कर देते हैं. इसी के साथ साथ जो है हमारे पास नायला का मैसेज आया है. वालेकुम अस्सलाम नायला, बिल्कुल ठीक ठाक. नायला ने पेज पर हमें मैसेज किया था और कहा था कि रहीम शाह का कोई गाना इंक्लूड कर दीजिएगा आज शो पे. रहीम शाह के वैसे सॉन्ग्स मोस्टली इंक्लूड करते ही रहते हैं हम शो पे, लेकिन ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली हम प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड इसी के साथ साथ समी, मैं आपके लिए गाना प्ले करती हूँ हसन रहीम का थोड़ी सी देर में. सही है, लाइनअप करती हूँ आपके लिए, हमारे साथ रहिएगा. बिल्कुल, मैंने आपका मैसेज जो है वो पेज पे देख लिया है. Okay, so meanwhile, we are moving on towards the track called Mahiya Bye Bye. Aatif Aslam milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahega.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: क्या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: कूल किंग,
3: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Genie in radio.

0: KHI space your text message. Send it to 3636.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: 100 FM।
7: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
5: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
9: In radio.

0: Genie in radio. Radio.
1: Ready to now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log hame bilkul messages kar rahe hain 3636 par aur tarike kar bahut hi aasan hai, just type KHI then leave space aapka message aapka naam aapki request aur 3636 par bhejna hai yani ke 3636 par bhejna hai. Make sure jab aap hame message karenge to aapne apna page pe bhi naam likhna hai jab aap message karenge aur 3636 par bhi naam likhna hai jo ke zaruri hai. So janab kyunki time hamare paas kam hai, it's 48 minutes past we're on the dial right now, so jaldi jaldi hum jo hai wo tracks ki taraf move on kar rahe hain. Hamare paas rubab ne message kiya tha पेज पे हमें मैसेज किया था. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज रुबाब, सो स्वीट ऑफ यू. आवाज की उन्होंने तारीफ की है, बहुत शुक्रिया. एंड रिक्वेस्टेड फॉर द ओएसटी ऑफ दो बोल, सो इफ यू आर लिसनिंग योर सॉन्ग इज नाउ प्लेइंग. सो मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी द ओएसटी ऑफ दो बोल बाय नबील शौकत.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100। Like us on facebook.com/fm247365
8: 247365। Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: station for maximum music. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Then go ahead, Aaram.
2: Azra Behen, Zara Baat to Suno. Hatu Bhi Bhago.
3: Ahmed, Hatu Vase.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
7: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: 100 FM।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: 100 FM।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
0: And
5: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: And
8: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू.

0: दहशत आगे बढ़ो बिना रुके।
1: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: 100 FM.
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular बैटरी दिल को है आराम,
6: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी,
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
8: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश.
0: एंड
8: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: एंड
8: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: FM 24/7/365

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL।
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार, बाइख्तियार।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: किसने कहा

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: एंड
8: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
7: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: कूल किंग। अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
12: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500
13: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
12: دنی دو دو دنی چار دنی دو
14: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
15: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
16: ये क्या है भाई?
15: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
17: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
15: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
18: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
1: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
1: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
1: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
1: एंड
7: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
1: एंड

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
6: Restaurant business mein har second matter karta hai. Customers quality ke saath discounts bhi chahte hain. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. Isi liye mere paas hai Bank Al Habib ka Al Habib Current Plus account, jisme mile free checkbook, debit card, banker's check, e-statement, online banking, Al Habib digital ke zariye internet banking aur SMS alerts facility. ATMs and cash deposit machines ki easy accessibility. Mulk bhar mein phaila hua branches ka wasee network. Al Habib Current Plus account. Bharosa bhi, raftaar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहां HBL.
8: एंड अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: एंड
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
1: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
1: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
1: एंड
12: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: एंड
13: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
1: एंड
14: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
15: FM247365. Portland Radio, as you know it, is extinct. This is a new species of music station. The evolution
16: has begun.
15: This is the all-new
16: FM
15: 100. Why change and buy into technology?
17: There's only one station in name blazing today's hottest music.
18: The hottest music.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
6: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Kisne kaha tha paise bacha?

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
4: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
5: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जस्ट कैश.
6: And लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
7: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
8: And अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
9: And
10: तूफान है,
11: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
12: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
1: This is FM 100.
2: Across the nation.
3: It's
0: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
4: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
7: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
6: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
8: Cool King.
9: Bijli ka bill dekha. आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
10: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
7: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
6: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
11: 100 FM.
12: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
13: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
15: This program is brought to you by
16: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम.
10: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
17: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
10: एंड
18: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
10: एंड
18: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
10: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
10: And
7: Al Habib current plus account, bharosa bhi raftaar bhi. Bank Al Habib, rishta bharose ka.
10: And
5: tufaan hai, har jeet ki pehchaan hai.
10: And
18: Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
11: 100 FM.
19: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
20: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
21: FM 247365.

0: 7 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
0: And HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL.
3: एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश.
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
8: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
0: एंड
9: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
10: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो.
11: अहमद हटो वहाँ से.
12: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
13: कूल किंग.
14: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
15: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
16: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
17: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
18: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
18: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार.
19: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
20: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
21: ये क्या है भाई?
20: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश.
20: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
8: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
1: This program is brought to you by
2: Tufaan Hai.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100

Hyderabad, Rahim Yar Khan.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: This is your music.
3: ओ छोड़ फिकरानू पीछे, सुनो मेरे फिकरों में लिखे हुए।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: किसने कहा था पैसे बचा?
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा
5: चलेगी नहीं दौड़ेगी।
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: तूफान है।
8: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
11: FM 24/7 365 FM 24/7 365
12: Evening Drive Time with DJ Priscilla.
13: Well, Ray friends, welcome back to the air. Coming in with an amazing number, I'm still choosing you. If you still have that love, then this is for that person. Good evening, everyone.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
4: Cool King
5: बिजली का बिल देखा आंखों ने डबल चेक किया फिर भी शॉक सेम इसी बात लेकिन बीपी हाई
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
8: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
1: This program is brought to you by
10: Tufaan Hai.
11: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
13: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
15: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
16: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
13: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
15: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
16: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
15: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
13: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
16: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
13: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
17: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
18: Well, exactly. Just listen. You're in tune to Radio 100 Pakistan, coming in with a track by Atif Aslam with Kaho. Stay tuned.

0: 6:08 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan Hai.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
11: FM247365.
12: FM 100.
13: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
14: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
15: Evening drive time with DJ Kassam.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: तो है आराम।
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे,
0: भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे ज़हनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं।

0: जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7/365

What a good song, really, really very, very nice. आधे अधूरे आशिर वजाहत ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा. एंड आई बेसिकली लाइक स्लो रॉक, इट्स वेरी वेरी नाइस. शायरी बहुत अच्छी है और माय कॉम्प्लीमेंट्स आप सबको, इसलिए कि मेरी एक आदत है कि अगर अगर एक तो मुझे एक तो मैं जिद नहीं छोड़ता, और एक जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे दिखाता हूँ. शुरू से आदत है, क्या करें.

0: your location for maximum music.
1: 아저씨, welcome back from the break. जैसे कहते हैं तुम अपना मुस्तकबिल तो बदल नहीं सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हो और तुम्हारी आदतें तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देंगे। देखिए जब चलते हैं एक नेक्स्ट सॉन्ग में गानों का जब दौर शुरू होता है तो दौर मुकम्मल होना चाहिए। आज भी ये भी एक डिफरेंट किस्म का सॉन्ग है। आज भी ये आगा अली साहब हैं कलाकार सेशन सीजन नंबर 1।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365. This is your music.

मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये सॉन्ग, क्योंकि दोस्तों ने मेहनत की है, कोशिश की है यहाँ तक अपना सॉन्ग पहुँचाने के लिए भी। यहाँ भी आपको पता है सॉन्ग चलाने के भी पैसे लगते हैं,

पता है आपको ये बात, कुछ नहीं मिलेगा इससे, क्या ही कर लेंगे आप खुद को बार बार बार बार सही साबित कर, क्या मिलेगा।

0: your location for maximum music.
1: आपने सुन लिया, देखें आधी किताब तो पढ़ गए हैं वो, बाकी आधी कल पढ़ेंगे। अगर सही है तो सामने आ जाएगा, साबित क्या करना है। लेकिन इस अमल में आप बहुत सारे लोगों को गलत साबित कर देते हैं, और अगर हमारा अखलाक सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों के लिए या चंद बड़े लोगों के लिए अच्छा है तो हम खुश अखलाक नहीं बल्कि हम मौका परस्त हैं। ये है आरज़ू हसन रहीम। एक कन्फ्यूजन है कि रहीम शाह का अपना नाम रहीम शाह नहीं है बल्कि उनका नाम हसन रहीम है, उसके भाई का नाम रहीम है। खैर जो भी है, हैं आर्टिस्ट बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे गायक।

आपको अपने दर्द का एहसास है, आप जिंदा हैं। अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप एक अजीम इंसान हैं। जब मैं बोलना नहीं आता था, हमारी माँ हमें बोले बिना हमारी हर बात समझ जाती थी। हम अब अक्सर कहते हैं, माँ जी आप नहीं समझेंगी। इतने अफसोस की बात।

This is Channa Adivaslam. Shlok jo hai.

0: लोग जो है किस्मत के धनी होते
1: तेरे प्यार भी
0: सिंपली वेरी लकी एनीथिंग टर्न्स टू गोल्ड।

0: your location for maximum music.
1: अगर दुनिया में म्यूजिक नहीं होता, गाने नहीं होते, कैसा होता ये, कैसे होती ये दुनिया? कहते हैं कि मुस्तकबिल में सारे शायद लोग बहरे हो जाएंगे, इतने सारे बम फटेंगे, तरफ बम, देखो बम, देखो गोली. हम सभी अगर फिर क्या करेंगे म्यूजिक का? इंसान मखलूकात तो खाम खा नहीं, फिर कोई ऑप्शन ढूंढ लेगा. पीसफुल गाने के बाद आ हुआ अजमत को क्या करते हैं हमारे साथ.

हाल पूछने से दिल का हाल ठीक तो नहीं हो जाता। अगर हो सके तो कभी कभार लोगों का दिल रख लिया करो, उनकी नापसंदीदा बातें बर्दाश्त कर लिया करें, एक गुस्से को अपने मिजाज को और इग्नोर कर दिया करें। ये खुदा के लोग हैं, हमेशा नहीं रहते, अचानक मर जाएंगे। अपना ख्याल रखें।

आज शनि साहब आपके जो इम्प्रोवाइजेशन है एंड की तरफ वो कमाल है बस. वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा गाया आपने. और अब जो है ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फाखर. अच्छी बात है कि सब कुछ खुद ही करते हैं. सबसे पहले उन्होंने मेरा सॉन्ग टाइम में भी पाकिस्तान को अपनी बैंड के साथ गाया था. मुझे याद है कि लाहौर में स्टेडियम के अंदर उन्होंने गाया था. उनके साथ हारून हुआ करते थे. दिल कमला इन्होंने कोक स्टूडियो में गाया था नताशा के साथ.

0: बारिश बातों को याद रखें। अब प्यार दो और दो मुझ पे सारी जिम्मेदारी। प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मैं मेरे ये होती है दफा कोई ना कोई चेंज हो, तुमने जाना गानों में चेंज, चाल में चेंज।
1: अब तुम याद आ रहे,
0: दो घंटे गुजारने पड़ते
1: हैं,
0: निकाल निकाल के चलानी पड़ती
1: है। भला मेरी जान जा रही है, तुम
0: कभी आप नहीं है, टेलीफोन आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है।
1: हीरो से तेरी कब से बात,
0: आप तो बैग उठा के आ गए हैं।
1: पुकारती है आ जाओ, आ जाओ।
2: 100 FM, your location for maximum music.
0: ایک اور سانگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، علی سیٹھی شائع گل گایا، یہ سانگ بہت ہی پاپولر اور فیمس ہوا ہے۔ کے ساتھ میں لوگوں سے خدا حافظ کہتا ہوں، خدا حافظ ان شب خیر، خوش رہیں۔

FM 100's time check. It's 1 a.m.

વેલકમ બેક એંગી અંદા જંદા નજરો સન આવે પાવે ઓ રુસા રહે બ્યુટિફુલ ટ્રેક નબીલ ચોગત કી આવાજ ઓર ઉમીદ કરતે હૈ કે આપકો પસંદ આયે હોગા યે ટ્રેક મેસેજીસ આપકે આ રહે હૈ 3636 પર ઓર 3636 કે મેસેજીસ હમ કુછ દેર મે પડેંગે ઓર લેકિન दूसरे वाले मैसेज हम पहले पढ़ेंगे आज उसकी कुछ वजह है वो हम आपको अभी कुछ देर में बताएंगे और यहाँ भाई सबसे पहले फीता काटा है अस्सलाम वालेकुम डैशिंग क्या हाल है इस गर्मी में मेरा हाल गोले घंटे जैसा हो गया है यानी कि हरा लाल पीला समझ नहीं आ रहा गर्मी मैं गर्मी को लग रही हूँ या गर्मी मुझे लग रही है ओए अल्लाह जी एक सोच आ रही है कुछ महीनों के लिए दुबई चक्कर लगा कर आ जाऊं आपकी भी जान छुट जाएगी कुछ दिन के लिए जाऊं ना आप कौन सा रोक लेंगे अच्छा ले मैं रोकूंगा थोड़ी मैं कहूंगा दो टिकटें कराओ नालो नाल चलेंगे अच्छा जी अचानक खामोश हो जाऊंगी फिर पता लग जाएगा अरे ना अल्लाह ताला हमेशा मुश्क आपको हंसता मुस्कुराता रखे हमारी दुआ है आपके लिए ऐसा मत सोचा करें वैसे भी दशिंग चुड़ैल से सब डरते हैं यहां से टाटा बाय बाय अच्छा जी भूख लगे तो कमेंट्स नहीं खाइएगा आज तो आपका फेवरेट सॉन्ग

आपका फेवरेट सॉन्ग पता नहीं ओनली मी ओनली फॉर मी अच्छा अंग्रेजी लिखी हुई उर्दू में वरना गायब हो जाऊंगी टाटा भाई मुश्क आपको हम गाना जरूर डेडिकेट करेंगे ओके टेक टाइप का आज तो इरफान मेमन भी आ गए हैं इरफान मेमन इससे पहले कि मैं आपके मैसेज पढूं इरफान मेमन बताइए अम्मी की तबीयत कैसी कह रहे हैं सोने स्वीट सोने को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल हो मेरे कुछ कंजूस कजन आपका शो सुन रहे हैं आपको सलाम भी बोल रही हैं आपके वो कंजूस कजन जो हैं वो कल भी थे और एक सॉन्ग डेडिकेट सतार भाई ओके हो गया अरे सत्तार भैया क्या बात है भैया और मेमन कजन्स को डेडिकेट करना बिल्कुल कर देंगे जनाब आपके मेमन कजन्स को भी डेडिकेट करेंगे और आपके जो मेमन कजन नहीं है उनको भी डेडिकेट करेंगे यानी कि समझ रहे हैं ना आप हैं जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में अनकरीब मैं आपके 3636 वाले मैसेजेस की जाने बढ़ने वाला हूँ फरीन शहजादी आ गई हैं और कह रही हैं हबीबी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप ये सुने हो मैं आ गई अरे वेरी गुड भाई आप आ गई हैं और कल आपने 3636 पर मैसेज किया था अब समझाऊं मेरी प्यारी सी बहना ने कहा था हबीबी अस्सलाम वालेकुम खैर जी आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं सलामती की और इसको क्या हो गया इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में जी जनाब 3636 पर सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से भाई यूसुफ भाई ने पाबोज से तमाम सुनने वालों को सलाम एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम आंटी चाची अरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर इमरान भाई खुदाब गुल्लाला गुफरान भाई और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा वालेकुम अस्सलाम उमेर ने भी सलाम कहा है आपको और सब सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा आज के मौजू के हवाले से बात कर लें कुछ मैं बोल रहा था कि कोई ना कोई आपसे मैं सवाल फ्लोट करता हूँ वो जनरल नॉलेज का भी होता है या फिर रिडल भी होता है लेकिन कभी कभी बात हो जाती है हमारी टॉपिक पे भी तो आज कुछ ऐसी ही बात करते हैं पूछ रहा हूँ वैसे मैं आपसे कि कभी ऐसा घर में मामलात हो जाते हैं बहुत इधर के उधर के बच्चों की पढ़ाई के बच्चों की शादी के चले मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको तो अचानक से जो ना आपके मामलात में कोई कूद जाता है और कूद के बीच में दखल अंदाजी करता है और दखल अंदाजी करके भाई ये इस तरह सही नहीं है मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सिटी सही नहीं है बच्ची के लिए या बच्चे के लिए आ रहे हैं सब वहां पर ऐसे ही मैं बता रहा हूं जबकि ऐसा कोई सीन है या नहीं है वो अलग बात है तो इस तरह के और भी जिंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं काम ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ अपने और कुछ बहुत ही अपने खामखा कूदते जरूर हैं आपको कोई पसंद आ गया या आपने कोई काम मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज खरीद ली है गाड़ी खरीद ली है या मोटरसाइकिल खरीद ली अबे यार बता तो देते यार अब आपने बताया नहीं ना और अगर आप बता देंगे यानी कि समझ रहे हैं ना पूछ लिया यार सोच रहा हूं कुछ खरीद दिया जाए तो बस फिर उनकी दखल अंदाजी शुरू तो लोग दूसरों के काम में कैसे दखल देते हैं ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं नहीं है ये बताना है आपने यानी कि समझ रहे हैं ना और जनाब नदीम सलाम तमाम सुनने वालों को भी सलाम कहा है आई लव यू नदीम हाय लज्जी ये तो मेरे बाप का मैसेज है और कैसी हैं मेरे बाप ठीक ठाक होंगी उम्मीद करता हूँ आपके मैसेज

0: వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎంగే ఎక్కడికి చలావా బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ అండ్ ఐ హోప్ యు లైక్ ఇట్. అవి క్యూకి సమీ కి మెసేజ్ మేరే సామ్ ఖులే హుయే తో సమీ కా మెసేజ్ ఆయా కరే జనాబ్ సజ్జాద్ జీ కిడకిడ సాంగ్ నయా నయా థా మేరే పాస్ ఉస్ వక్త్ సెల్ నోకియా కా కీ ప్యాడ్ మొబైల్ హోతా థా ఎఫ్ ఎం రేడియో వాలా క్యా టైమ్ హోతా థా వో భీ బుడ్డే హోగే హోగే భాయి కుచ్ సాల్ పెహలే కీ బాత్ హై భాయి. ఔర్ పురానా వక్త్ జో హోతా నా గుజరా వక్త్ హర్ ఇన్సాన్ కో యాద్ ఆతా హై ఔర్ ఇస్ తరహ తో హోతా హై ఇస్ తరహ. ఔర్ అబ్ ఎఫ్ ఎం కా వాలా రేడియో కా టైమ్ వో అభీ భీ హై భాయి, యాని కీ సమజ్ రహే నా నదీమ్ భాయి. ఆప్కే స్టూడియో మే యే జో తీసరా సిస్టమ్ 3636 వాలా హై జీ హై, బహుత్ సారే సిస్టమ్ హై, తీన్ నహీ హై, చార్ పాంచ్ హై. और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेज के. जॉन है इफ्तिखार भाई कह रहे हैं क्या हाल है. अच्छा ये दोबारा आ गया मैसेज, हाँ दोबारा आ गया. सलाम सुनियो, मैं आजकल बाबा बन गया हूँ और चुड़ैलों को बोतल में बंद कर देता हूँ. सलीम मेमन. सलीम भाई आप बाबा बन गए, तो बाबा बंद नहीं होता, बाबा बंद नहीं करता, बाबा बंद होता है, यानी कि समझ आए ना आप. किसी दिन आपको चुड़ैल टकरा गई सही वाली, यानी कि समझ रहे ना. फिर मैं पूछूंगा आपसे कि बाबा कहाँ है और बोतल कहाँ है. उम्र बाबा कह रही है मैं मन नदीम अच्छी नहीं लगती मुझे मालूम, बताओ मेरा तरफ नहीं करते हो क्योंकि मैं उर्दू अच्छे नहीं बोलती, ना मुझे जो भी सलाम बोलते नाम नहीं मालूम, सबको सलाम. हाय लजी उमर बाब, आप बहुत अच्छा उर्दू बोलते हैं और हमको आपकी उर्दू बहुत पसंद है, पढ़ना भी बहुत पसंद है. और आपको नाम मालूम जो आपको गाना डेडिकेट करते हैं, बताएं कौन. सलाम सुनियो, मैं आजकल बाबा बन गया हूँ. अभी कितनी बार बाबा बनोगे भाई. अच्छा कहीं अब्बू के बाबा तो नहीं बन गए. वो अब्बू बन जाते ना, अब्बू अब्बू अब्बू बच्चे बोलते हैं ना, अपने अब्बू को बाबा भी बोलते हैं. वो वाले बाबा बने हैं, दूसरे बाबा बने. अना मेमन कह रही है थैंक्स भाई, कल बैलेंस आ जाएगा ना भाई. कंजूस बोले बोलना भूल जाएंगे, आएगा बैलेंस जरूर आएगा. और सबके लिए दुआ करवाते हैं, इरफान भाई की शादी की भी दुआ करवाया करें, अक्सर करते हैं इसके लिए, बहुत सारी दुआएं करते हैं. और बस इरफान भाई को इस हवाले से बाद में बात करेंगे. संजीदा जी, समी, इरफान मेमन और तमाम मेमन बहनों को सलाम कह रहे हैं सलीम मेमन. तुम मेरे तरफ नहीं का तुम मालूम, शुमा मन जॉन एमन नदीम लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि समझ रही है ना आप. हम आपकी तरह बात कर भी नहीं सकता हूँ, उसकी वजह है आपकी बात ही कुछ और है, यानी कि समझ रही है ना. आपकी बातों में मिठास है, अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे. आपकी उर्दू कहने में एक अलग प्यार फील होता है. उमेर उबाब बहुत प्यार से उर्दू कहती हैं, ये बात फैक्ट है. देखें ये बात समी ने भी कह दी है. सलीम भाई गर्मी ज्यादा है, कोई फालूदे की पार्टी दे दे. भाई अभी तो बारबेक्यू की पार्टी देनी है इन्होंने, अकेले अकेले करके आ गए. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. हाँ मुश्क आ गई समी भाई. डैशिंग प्लाट थोड़ी है, कायनात की जगह कोई नहीं ले सकता. आए सो स्वीट मुश्क, जीती रहो मुस्कुराती रहो. और मुश्क के और भी कमेंट, डैशिंग पता नहीं लोग दूसरों के काम से काम में कैसे दखल दे देते हैं. मुझसे तो अपना काम भी नहीं होता, बुड्ढी खूसट हो जाओगी नहीं तब पूछूंगा.
1: तुम क्या कर रहे हो.
0: अभी तो ये उम्र ही ऐसी है, यानी कि समझ रही है ना. और कहती हैं डैशिंग एक सॉन्ग बहुत जोर से याद आ रहा है, आपके पास है? ओ तेरे संग यारा बिड़ा गरक हमारा, तो खुद था बिगड़ा मुझे भी बिगाड़ा। आवाज नद्दू बर्गर, हम नवाज जानू बर्गर। सही जा रही हो सोना जिन, तुम्हें मैं अपने साथ दुखी कर लूंगी मगर किसी और के साथ सुखी नहीं रहने दूंगी। गड्ढे गड्ढे सही जा रही हो तुम, अभी बातें जो है ना वो अच्छी लग रही हैं। और आगे बढ़ते हैं। कसम से मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, उसे एक नजर देखा दिल बगावत कर बैठा। बगावत भी की तो कहां की, सोनियों करनी थी इससे करते जो बारबेक्यू, अकेले अकेले ठूंस गए। ये सर से गुजर गया, सो नी होयो करनी थी, सो नहीं होयो करनी थी, ये मेरे समझ में नहीं आया। मुश दोबारा करो ये वाला मैसेज, यानी कि समझ रही है ना आप। और नदीम भाई, सलीम भाई को सारा गोश्त, सलीम भाई का सारा गोश्त मुक गया, सलीम भाई का नहीं, सलीम भाई के पास रखा हुआ सारा गोश्त मुक गया, खत्म हो गया, ये बोले। अबे भाई दो दो महीने चला। अच्छा वैसे एक बात है, ये अचानक मेरे जहन में आई ये बात, और ऐसा मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है कि ईद उल अजहा के बाद यानी कि बकरा ईद के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन महीने महीने डेढ़ डेढ़ दो दो महीने के बाद लोग गोश वाले के पास आकर गोश बनवा रहे होते हैं फ्रीज करके। अबे हद है भाई, क्या हो गया यार। अब आप ये सोच रहे होंगे, चले एक सवाल भी नालो नाल करता हूं, गोश्त जो है चाहे वो बीफ हो मटन हो, फ्रीज करके कितने अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताइए। ये एमी पूछा है, अगर नहीं भी बताएंगे तो मैं बता दूंगा। और मुश्क जी आप बहुत शरारती और खतरनाक लगती हैं। सलीम मेमन कह रहे हैं भाई, मुश्क तुम्हें कह रहे हैं। और सभी कह रहे हैं दो महीने, अच्छा दो महीने तक, मतलब दो महीने तक तुमने रखा हुआ है, इतनी गर्मी में दो महीने, लाइट कितनी जा रही है भाई, आई थिंक चार मंथ, अच्छा दो से चार हो गया तुम्हारा, अगर लाइट ना जाए तो चार महीने। समी तुम कितने अरसा तक जो है गोश्त फ्रीज करते हो? सुने हो आपको लिखा है अलग अलग करके, सुने हो, हाय अल्लाजी होने समझ आ गया है, मुश्क ने बता दिया भाई हमें। इरफान मेमन कह रहे हैं सुने हो मुश्क यूनिक नाम है, माशाल्लाह से अच्छा नाम है, जिनका पूरा नाम, इनका पूरा नाम है मुश्क लैला, मुश्क लैला कह लें या मुश्क लैला कह लें, यानी कि लैला की खुशबू। अरे एक गाना मुश्क को डेडिकेट करते हैं, मुश्क क्योंकि तुम्हारा नाम मुश्क लैला है ना, तो एक बड़ा जबरदस्त सा एक्सक्लूसिव ट्रैक है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। अच्छा जनाब ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं मुश्क लैला के नाम की वजह से मुश्क को, हैं जी ते हैं जी, एलो पढ़ो। और ये एक्सक्लूसिव ट्रैक मेरे शो में फर्स्ट टाइम चल रहा है, एंड आई होप यू लाइक इट।

Welcome back, लैला मजनू कैसन लगा या गाना एक्सक्लूसिव ट्रैक था और इसके सिंगर थे जनाब फहीम अब्दुल्ला और जुनैद अहमद और ये अभी का गाना नहीं है थोड़ा सा पुराना गाना है मगर अभी आप लोगों के सामने आया शाखों के दो पत्ते खिजाओं में मिल रहे थे जैसे लैला मजनू सपनों में मिल रहे थे भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये फहीम अब्दुल्ला वही है आपको बता दूं मैं आह लिखूं तू आ जाए सुना ना ये गाना तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है उम्मीद करते हैं कि आपको गाना पसंद आया होगा और मुश्क को कैसा लगा गाना मुश्क को वैसे हल्ले गुल्ले वाले गाने पसंद होंगे लेकिन आई होप कि ये भी शायद पसंद आया इरफान मेमन करे सुनो आंटी एफएम की अरूसा सिस्टर भी गायब है अच्छा भाई आंटी के हवाले से बड़ा अच्छा हुआ याद दिला दिया और मैंने आज आंटी के लिए बड़ा जबरदस्त सा गाना भी निकाला हुआ है और अब आंटी का जिक्र हो ही गया है तो आंटी के लिए सबसे पहले तो बेतहाशा दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे और आंटी बस दुआओं की जरूरत है बेहतर है आंटी लेकिन 100% आंटी की तबीयत बेहतर नहीं है तो आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है अरूसा सिस्टर जी गायब हुई हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो आउट ऑफ सिटी हो वो मेरी बहन घूमती फिरती भी बहुत है ना और एक बार फिर बता दें जनाब आप मेरा नाम है नदीम अख्तर प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका अपने मोबाइल की राइट मैसेज में जाइए की ऊंचाई लिखिए स्पेस दीजिए अपने प्यार सा नाम प्यार सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर भाई आसिफ अली कहां है क्लिफ्टन वाले क्रिकेटर कहां हो अब तो फुटबॉल शुरू हो गया भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है यार फुटबॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल से किन किन लोगों को ज्यादा लगाव है क्रिकेट से तो खैर है ही पूरे पाकिस्तान को ही लेकिन फुटबॉल से अगर किसी को लगाव हो तो जरूर बताइएगा नौरीन मेरी बहना कह रही है आज तो टॉपिक क्या है या आज आप क्या बात पूछ रहे हैं नदीम भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह यानी कि मेरी बहन को अभी तक ये पता ही नहीं चला कि मैं कौन सा टॉपिक पूछ रहा हूँ मैंने तो कल खत्म भी कर दिया है गोश्त अरे वाह भाई वाह अजय इन्होंने कुछ लिखा है कि चलो तुमको मिलाता हूँ मैं उस मेहमान से पहले चलो तुमको मिलाता हूँ मैं उस मेहमान से पहले जो मेरे जिस्म में रहता था मेरी जान से पहले मुझे जी भर के अपनी मौत को तो देख लेने दो निकल जाए ना मेरी जान मेरे अरमान से पहले कोई खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी से डर समंदर चुप ही रहता है किसी तूफान से पहले मेरी आंखों में आबी मोतियों का सिलसिला देखो मेरी आंखों में आबी मोतियों का सिलसिला देखो ये माला रोज जपता हूं मैं एक मुस्कान से पहले पुराना यार हूं दोस्ती ये मेरा फर्ज बनता है पुराना यार हूं दोषी ये मेरा फर्ज बनता है तुझे होशियार कर दूं मैं तेरे नुकसान से पहले इतना जबरदस्त किस्म का इंतखाब भेजा ना ऐसे इंतखाब आप जुमेरात के शो में भी भेजा करो मेरी बहन वैसे जो आज का टॉपिक है उसके हवाले से भी मैं बता दूं क्योंकि हमारी नौरीन महना ने भी नहीं सुना तो हो सकता है बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने भी ना सुना हो दखल अंदाजी के हवाले से बात हो रही है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जो हर बात में चड्डी पहन के कूद जाते हैं मैं बताता हूं आपको कि किस तरह ये काम करना या मैं बताती हूं आप या मुझे क्यों नहीं बताया तो ये आप आज का टॉपिक है इस हवाले से और दखल अंदाजी के हवाले से अगर आप कुछ और इसमें यानी कि समझ रहे हैं ना हाँ
तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। संजू कह रही है बेहतरीन सॉन्ग लैला मजनू, मुकम्मल तारुफ के साथ टाइटल भी बता दें प्लीज। दोनों सिंगर्स के नाम जनाब अभी बताया संजू, इनके सिंगर के नाम है जुनैद अहमद एंड अब्दुल्ला फहीम, और उसके साथ टाइटल है इसका लैला मजनू। और भाई संजू की एक ट्रेडमार्क एक मैसेज आता है, मैं अब इसको ट्रेडमार्क मैसेज कहूंगा, और बड़ा जबरदस्त होता है रूहे मन के हवाले से। तो रूहे मन अब क्योंकि एक माहौल बन गया था नौरीन के मैसेज के बाद, तो रूहे मन भी हो जाए कुछ। तो रूहे मन, रूह से जुड़ी मोहब्बत में शोर नहीं होता, दावे नहीं होते, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वो इंसान को बदलती नहीं, संवारती हैं। वो उसे सबर सिखाती हैं, बर्दाश्त सिखाती हैं, और कभी कभी खामोश रहकर भी निभाना सिखाती हैं। बहुत खूबसूरत लफ्ज है ये, वाह वाह क्या बात है, मुझे अच्छा लगा ये। और कभी कभी खामोश रहकर भी निभाना सिखाती हैं। ऐसा शख्स अगर हंस रहा हो तो उसकी हंसी में एक नाम शामिल होता है, अगर रो रहा हो तो उसके आंसुओं की वजह भी वही एक शख्स होता है। सूरत की मोहब्बत खत्म हो जाती है जब चेहरा मामूल बन जाए, मगर रूह की मोहब्बत खत्म नहीं होती, वो आदत नहीं बनती, इबादत बन जाती है, और इबादतों से रिहाई नहीं मिलती, चाहे इंसान जितना भी चाहे। इसलिए सच यही है कि बदलता वही है जिसने सिर्फ सूरत से मोहब्बत की, वरना जो रूह का कैदी हो वो रिहाई पाकर भी आजाद नहीं होता, वो उम्र भर उसी एक एहसास का असीर रहता है, असीर रहता है। ऐ रूहे मन, ऐ रूहे मन, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह भाई, भाई बहुत खूब। इनमें कई ऐसी सतरें हैं जो बहुत ही आला है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा ये मैं ना नाम प्रोनाउंस शायद सही ना कर सकूं, यानी कि सही इसका तलफ्फुज मुझे शायद ना आ सके। गुलाफिशी आरियान, गुलाफिशी आरियान, काफी टाइम बाद एफएम लगाया, कुछ दिन हुए आपका शो सुना, अच्छा लगा। गुलाफिशी मैंने सही नाम पुकारा, आप बस इतना जरूर बता दो, मतलब आप बता दें। अब ये भी नहीं पता ये मेल का नाम है या फीमेल का नाम है। आर्यन तो समझ में आ रहा है, लेकिन गुलाफिशी, गुलाफिशी, गुलाफिशी, सोच रहा हूं मैं इसके मायने, शायद उससे मैं सही प्रोनाउंस कर दूं। खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से कि आपने सुना। मोहतरम या मोहतरमा जो भी हैं आप, तो आपको हम गाना भी डेडिकेट करेंगे इसी खुशी में। समी भाई, मैंने सुना है कि आपने इतना गोश शॉपर में जमा किया है कि फ्रीजर का दरवाजा भी बंद नहीं हो रहा था, और रस्सियों से बांध कर उसको दरवाजे को बंद करना पड़ा। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं, समी क्या इसमें कितनी सदाकत है जरा जरूर बताना। समी के मैसेज की जाने भी जाते हैं और कह रहे हैं कि अभी लोड है फ्रिज। अच्छा पहले से जवाब दे दिया। नदीम भाई, हुमा ख्वाजा के सॉन्ग का नाम क्या था? मेहरबान, हुमा ख्वाजा के गा। अच्छा इसका मतलब शुरू से सुन रहा है शहजादा। ओके ठीक है भाई, ओके ठीक है। अरे मुश्क तुम क्यों चुप हो गई हो, अरे मुश्क कहाँ चले गए हो। और फरहीन कह रही हैं, हमारे मामलात में मदाखलत करने वालों का हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमें जिंदगी में अलग से प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। ये मुदाखलत जो है, अच्छा मैं आपको इस हवाले से एंड में मैं अपने व्यूज दूंगा इस टॉपिक के हवाले से। दखल अंदाजी, मुदाखलत एक ही बात है, तो आप लोगों ने अपने अपना बताना है कि भाई आप लोगों में भी हो सकता है वो जरासीम हो,
کیا پتا اسی وجہ سے میرے پاس اس کے زیادہ جواب نہیں آ رہے کہ آپ خود ہوں کہ آپ خود جو ہے ٹانگ اڑاتے ہوں ہر معاملے میں, یعنی کہ سمجھ رہے نا. تو اگر آپ نہیں ہیں تو کون اڑاتا ہے بھائی, یہ بھی بتائیے. سنجو کیا کہہ رہی ہیں, ارے سنجو تھینک یو یار. اور کہہ رہی ہیں شکرن دلکش پڑھا آپ نے اور اچھا ہو گیا جی. اور کہہ رہی ہیں گل فشاں فشی لکھا ہوا ہے نا, فشاں نہیں لکھا ہوا نا, گل فشاں ہوتا تو میں سمجھ لیتا. گل فشاں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا بنیادی معنی پھول برسانے والا, پھول بکھیرنے والا یا گلریز ہے. اس کا مؤاخذہ افشاندان ہے جس کا مطلب بکھیرنا یا چھڑکنا ہے. واہ واہ واہ واہ واہ بھائی, بل گلفشاں کے بارے میں تو خیر مجھے پتا, یہ گلفشی لکھا ہوا تھا نا, یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, گلفشاں کا بھائی تو نہیں ہے یہ, گوبھی کے پھول کو تو نہیں کہتے. خیر جی سنجو تھینک یو ویری مچ. اور عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ندیم بھائی کرکٹ پسند ہے فٹ بال پسند نہیں. ارے کیسے آدمی ہو یار, ہمارا بھی گوشت ختم ہوا سبزی ہی پک رہی ہے. اور آپ کو بتایا بھی تھا سنو, پالک آلو اور امی کے ہاتھ کے گرم گرم روٹیاں, پالک آلو کے اب سارا زندگی کھاتے رہو گے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, پالک کچی پالک کھاتے ہو یا پکی ہوئی کھاتے ہو؟ عرفان میمن بھائی مذاق کر رہا ہوں, سمجھ تو سب بہنیں گئی ہوں گی میری, بکریاں وکریاں بھی کھا لیتی نا پالک, بکرے بھی کھا لیتے. اچھا بھائی گوشت ختم ہو گیا ہے, اچھا کسی کے پاس بھائی ابھی کتنے ٹائم تک کا گوشت رکھا ہوا ہے؟ اب اس حوالے سے میں آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن بھی دوں گا. قادر بخش بلوچ سائیں ہمارا آ گیا ہے نا بھائی, آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام. آصف بھائی کے گاؤں سے ریکویسٹ گیسٹ آئے ہیں, شام کو میری بات ہوئی تھی آصف سے. دیکھیں ہم نے آصف کو یاد کیا تھا, یہ بتا دیجیے گا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. سمی بھائی مجھے میرے موکلوں نے یہ بات بتائی ہے. اچھا سمی بھائی کی جو بات تھی ڈی فریزر والی, وہ آپ کو آپ کے موکلوں نے بتائی ہے, یعنی آپ کے پاس موکل بھی ہیں. اور آپ سے سوال ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں. مش کہتی ہے پتہ ہے ڈشنگ, آج تھوڑی تھوڑی اداس ہوں لکھا ہوا ہے, اتنی اداس کے جانو برگر کھانا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو پریشان ہوتے ہیں نا جب ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے, یا اداس ہوتے ہیں تو بھوک زیادہ لگتی ہے. اس کا مطلب ہے مشک لیلا جو ہیں وہ کافی موٹی ہوگی, اداسی میں بھوک لگ رہی ہے اس کو. یار جانو برگر تو فل پاپولر ہو گیا, جانو بھائی کو میں بولوں گا, ابھی تک گیا نہیں میں ان کے پاس, لیکن جب بھی جاؤں گا تو بتاؤں گا جانو بھائی کو. اچھا بھائی قادر بخش بلوچ بھائی سائیں ایک بلوچی گانا ہم آپ کے لیے چلائیں گے ضرور, ہاں بڑا زبردست گانا ہے, یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ. لیکن ابھی جو ہم جس کا ٹریک کی جانب جا رہے ہیں, یہ ہماری پیاری سی آنٹی جو ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم, کیونکہ یہ ٹریک ہے ہماری پیاری سی آنٹی کی پسند کا. تو میری پیاری سی آنٹی مجھے پکا پتا ہے آپ سن رہی ہوں گی, آئی لو یو آنٹی, اور آپ کے لیے یہ گانا.

0: सुनेंगे सुनियो। और हमारी प्यारी सी आंटी को गाना जरूर पसंद आया होएगा 100%। और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दूं, जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक हम जारी और सारी रखेंगे हल्ला गुल्ला। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। आज का मौजू है जनाब दखल अंदाजी, टांग अड़ाने वाले जो है ये क्यों करते हैं भैया, और आपकी जिंदगी में ऐसे हैं या आप खुद ऐसे हैं, इस हवाले से आप बताएंगे मैसेजेस के थ्रू। और जनाब शायद आप समझ, शायद अब आपको समझ आ जाए, गुल अफशी आरान, आर्यान, गुल अफशी आर्यान, गुल अफशी कैसी हो, अब ये भी पता चल गया कि ये कौन है, यानी कि फीमेल है।
1: गुल अफशी को हम गाना डेडिकेट करेंगे,
0: अब ये नहीं पता कि इसकी पसंद कैसी है, मतलब फास्ट गाने सुनती है, स्लो गाने सुनती है, गजले सुनती है, गीत सुनती है,
1: पश्तो गाने सुनती है या सिंधी सुनती है या मेमी गाने सुनती है, ये नहीं पता भाई।
0: तो गुलफशी अगर आप चाहें तो बता सकती हैं, यानी कि समझ रही हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, यूसुफ भाई पापोज से तमाम सुनने वालों को और FM 100 की तमाम फैमिली को। फैमिली जानू जानू बरख बरख, क्या हो गया ये, क्या लिखा है आपने, सलाम लिखते हैं आप अक्सर, ये गलती से लिख दिया, जानू आपने भाभी को कहना होगा। सुने हो ये जानू बर्गर वाले का एड्रेस मुझे बताइए, मैं अचानक छापा मारूंगा, यानी कि समझ रहे ना आप भाई, ये आप गुलशन इकबाल चले जाइए, हसन स्क्वायर से आगे जाएंगे तो मुमताज मंजिल आएगा, मुमताज मंजिल पर एक बिरयानी बहुत मशहूर है, वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी है।

लेना चाहते हैं वो भी है। वहां जब आप पहुंचेंगे तो किसी से भी पूछ लेना जानू बर्गर वाला खाएं, तो वो आपको वहां तक पहुंचा देगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जी, कादिर बख्श कह रहे हैं भाई आज मैंने आपका NIC पर कितने सिम है, है? तो मुझे पता है कि एक सिम जो मैंने ली है नहीं है मेरे NIC पर, कंपनी ने किसी और को दी हुई है, कंपनी ने किसी और को दी हुई है। अरे भाई आप फौरन, एक कादिर बख्श साहब, ये इनके मैसेज का मुखफ्फ ये है कि इन्होंने सिम के बारे में पता किया तो इनकी सिर्फ अपनी सिम थी, लेकिन बाद में पता चला किसी और कंपनी ने किसी और को भी दी हुई। तो इसका बेहतरीन हल ये है भैया कि जो नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपने पास रखें और बाकी जितने भी नंबर हैं उनको बंद करवा दें। बोले भाई ये मैंने मेरे नाम पर नहीं है, मेरे नाम से हटा दें कंपनी को, बोले ये आप जरूर कीजिएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और नौरीन कह रही है, नदीम भाई जो शख्स हमारे हर मामलात में मुदाखलत करता था वो हमारी जिंदगी से खुद ही निकल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ के फूका था हमें भी बता दो। मतलब करता था कोई ना कोई मुदाखलत, कौन था वो, मामा पुप्पा चाचा चाची कौन था? किसी की जिंदगी में बिला वजह मुदाखलत करना अच्छी बात नहीं है, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक हासिल है। दूसरों के मामलात में गैर जरूरी दखल अंदाजी ना करें, सिर्फ रिश्तों में तलखी पैदा ये करती है बल्कि एतमाद को भी नुकसान पहुंचाती है। बड़ी अच्छी बात ही कर रही है नौरीना, कसम से इतनी छोटी सी बच्ची यार, एक दिन की बच्ची देखो कितना अच्छा लिख रही। संजू क्या कह रही है, गुल फिशानी या गुल अफशीन, ये वही है गुल अफशां, गुल अफशीन एक फारसी और उर्दू लफ्ज है, इसके बुनियादी और मजाजी मायने दर्जे ज़ेल हैं। बुनियादी मायने हैं फूल बरसाना, फूल बिखेरना, फूल झड़ना, और मजाजी मायने हैं अच्छी बातें करना, खूबसूरती से गुफ्तगू करना। तो मुझे पूरा यकीन है गुलफशी में ये तमाम खूबियां मौजूद होंगी। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। जरीन ने शाम में बैलेंस करवाना था, शायद नहीं हुआ, घर पर कोई नहीं होगा, ये SMS किया है, आप तक पहुंचा रही हूँ। हाय सो स्वीट, मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर, तुम्हारी जानिब से और नौरीन तौसीफ की जानिब से हम संजू को गाना डेडिकेट कर रहे हैं, और वो ये रहा संजू आपके लिए गाना, जरीन नूर की जानिब से और नौरीन तौसीफ की जानिब से। एलो फड़ो ये भी एक्सक्लूसिव ट्रैक है, फर्स्ट टाइम चल रहा है मेरे शो में और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा।

कहेंगे सुने हो आप सबको। ट्रैक कैसा लगा सबको? तो ये ट्रैक था जनाब वो, और इसके सिंगर थे जनाब मुर्तजा कजलबाश, और उम्मीद कर रही है इनका नया ट्रैक आया है अभी कुछ ही दिन हुए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और इनके और भी बड़े जबरदस्त ट्रैक है, तो पाकिस्तानी नए सिंगर्स के ट्रैक्स भी सुना करें। तो मैं तो ये सोच रहा हूं, वैसे मुझे एक मशवरा दीजिए आप। मेरे हफ्ते में आपको पता है 6 शोज होते हैं, और उनमें से एक शो जो है वो ओल्डी गोल्डी क्लासिक होता है, जिसमें हम पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक्स जो है आपको सुना दें। और एक शो होता है मेरा जुमेरात वाले दिन जो है गजल के हवाले से और शायरी के हवाले से, बज़्मे गजल बज़्मे शायरी। तो मैं सोच रहा हूं कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें जो बिल्कुल नए सिंगर्स हैं, बेतहाशा हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं, और उनके गाने यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और पता नहीं ये क्यों ट्रेंड निकल आया है कि अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, वो उसकी एक एग्जाम्पल हो जाएगी बेसिकली। अब पहले ये गाना सुनिए, एंड ब्यूटीफुल ट्रैक है, और ये मैं थोड़ा सा वक्त जरूर दूंगा अपने पाकिस्तान के जितने भी नए सिंगर्स हैं, मतलब नए सिंगर्स से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल अभी अभी उन्होंने गाना शुरू किया है, पॉपुलर सिंगर्स हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत अरसे से जो है वो गा रहे हैं। तो उनके हवाले से अभी मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूं, क्यों नहीं पता हमें और पता कैसे चलता है, जस्ट लिसन दिस सॉन्ग।

beautiful track. अच्छा, अब इस ट्रैक के सिंगर का नाम आपको पता है? नहीं पता होगा। और इस ट्रैक में एक पार्ट ऐसा है कि वो पार्ट जो है बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि वो पॉपुलर हुआ। और वो पॉपुलर कैसे हुआ वो आपको मैं बताता हूँ कि वो पार्ट कौन सा है इस ट्रैक में। फीमेल पार्ट जब आएगा तो इस पर बेतहाशा रील्स बन चुकी हैं, बेतहाशा।

अच्छा, अब ये मैंने पार्ट स्पेशली आपको इस वजह से सुनाया कि होता ये है हमारे इस पाकिस्तान में कि जब रील बहुत पॉपुलर हो जाती है और उसके बाद वो इतनी पॉपुलर होती है कि पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है वो उसको पॉपुलर कर देता है, वहां पर वायरल हो जाती है बेतहाशा। तो उसके बाद हमारे ये जो सिंगर्स हैं, बेहतरीन सिंगर्स हैं, बेहतरीन जो गा रहे हैं उसके उनके बारे में तब आपको पता चलता है कि अरे हाँ ये गाना बड़ा पॉपुलर है, ट्रेंड में है, ये है, वो है। सो दैट्स व्हाई मैं ये सोच रहा था कि एक प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें हम नए सिंगर्स के गाने जो है वो चलाएं। नए मैं फिर वही कहूंगा कि इस वजह से कह रहा हूं कि गा तो बहुत अच्छा रहे हैं, पॉपुलर भी बहुत है, बट उनके गाने चलाएं। तो आपका क्या ख्याल है, ये इस तरह का एक शो हुआ करे? और जनाब संजू जो हैं वो कह रही हैं क्या बात है, और कह रही हैं बिल्कुल शुक्रन, एक तो उन्होंने ट्रैक को बहुत पसंद किया है, बहुत दिलकश आवाज है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि न्यू सॉन्ग की एक क्यू शीट होनी चाहिए और आज की क्यू शीट में कुछ तब्दीली जो है वो साथ में अच्छी लग रही है, और ये भी गाना बड़ा अच्छा था मजबूर। और इनके सिंगर जो हैं वो शहरयार रेहान हैं, आप ये भी जहन में रखें। आपका ये कहना बनता फीमेल पार्ट का, और फीमेल का भाई मशहूरी बहुत हुआ था, सिंगर शहरयार भी बहुत सुरीला सिंगर है, और कहती हैं कि जी संजू ने तो ओके दे दिया कि इस तरह का शो होना चाहिए, और फिर बिल्कुल इसको डिजाइन करता हूं मैं और आप लोगों को इस हवाले से जरूर बताऊंगा। और समी कह रहे हैं, समी तुम भी इस हवाले से कुछ बताओ। दो सवा दो हो गए यार, वो समी मैंने बताया ना कि मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर सबर कर लो तो, वो कह रहा भाई होना चाहिए। समी ने भी ओके कर दिया भाई। अच्छा, दो वोट हो गए हैं भाई जी, बिल्कुल मजबूर सिंगर शहर यार। और समी और भी कुछ कह रहा है, न्यू सॉन्ग अच्छे आ रहे हैं, सारे ही नहीं आ रहे, कुछ ऐसे भी आते हैं, और हमारे इरफान मेमन ने भी ओके टेक कह दिया भाई, और कह रहे हैं आज तो यूनिक नाम आ रहे हैं, गुल अफशी और मुश्क, देख लें शो में चार चांद लग रहे हैं। असद कह रहे हैं कि फोन कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं? भाई हमारा यहाँ पर जो है पूरा इलाका जो है वो मोहनजोदड़ो बना हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ यही नहीं हर चीज डिस्टर्ब है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेलीफोन हो। तो असद भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और आगे हमारे बाबू शहजाद बाबू कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसे हैं आप एफएम नाइट की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है। अमीन कह रहे हैं लबों पे गीत तो आंखों में ख्वाब रहते हैं, रहते थे कभी हम भी किताबों में गुलाब रखते थे, कभी जो होता था इंतजार उनका बड़े बादे शामो सहर का हिसाब रखते थे, इंतजार उनका बाद शामो सहर क्या हिसाब रखते थे। अमीन भाई सही जा रहे हैं। सलाम सोने हो, स्वीट सोने हो, बिग ब्रदर शो ऑसम बिंदास बोले तो झगास। उमर बाप को उन्होंने ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा है, भाई गाना कोई भी डेडिकेट कर दूंगा। और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फैमिली रंगीला। अच्छा कितना खूबसूरत नाम है ये रंगीला, इसके मायने जो हैं, सिर्फ मायनों को समझे तो दिल में रंग भर जाए। रंगीला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और जनाब हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, आपका मैसेज तो हो गया था और गाना भी हमने आपको डेडिकेट कर दिया था, लेकिन सलाम दुआ मैंने इनके जो है वो नहीं पढ़े थे भाई, आपका मैसेज शामिल कर दिया था, सलाम दुआ सिर्फ आपके रहते हैं, गाना भी डेडिकेट कर दिया था। लीम साहब आपने बहुत देर में प्रोग्राम सुना लगता है। इमरान रियाज, अयूब अफरीदी और खिताबुल लाला, नसीम कुरैशी, समी शेख, इन सबको जो है इन्होंने सलाम भी कहा है, मेरे वालिद मोहतरम को भी कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्क कहती है न्यू सॉन्ग से मजा आ गया, दुबई नहीं जाना है मुझे, बस ये तो गलत बात है मुश्क, मैंने जाने का बोला तो फिर कहेंगे मैं नहीं जाना, ये क्या बात हुई, हमने मैं तो जाऊंगा बाबा के साथ, लेके जाए मुझे भी।
अच्छा भाई हमारी नौरीन महना ने भी गाया बिल्कुल होना चाहिए और कह रही आज चीव शीट बहुत खूब है, इसमें मेहनत भी होती है यकीन मानिए। शुक्रिया। अभी आपको एक और गाना सुनाऊंगा, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। समी कहता है जैसे भाई आसिम अजहर ने बनाया है सर से गुजरा है वो सॉन्ग। हाँ बस इसी वजह से नहीं चला सका यार वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे वो गाना थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ है। मुश कहती हैं कि आपको भी नहीं जाने दूंगी। अरे ये तो गलत बात है मुश, ये क्या बात हुई। संजू कह रही हैं अच्छा मजबूर और सिंगर हैं शहरयार। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो गाना मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर सुनाया था ये उस गाने के हवाले से बात हो रही है। और यार मेरे पास गाने कुछ ऐसे भी पड़े हुए हैं कि जो चले। एक गाना जो है समी यार भाई ये वाला गाना जो है ना तुम्हें पसंद भी है, तुम्हारी जानिब से होने वाली भाभी को डेडिकेट कर रहा हूँ। वो गाना भी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा वो भी चला दूंगा। तो भाई समी की जानिब से हमारी होने वाली भाभी के लिए ये वाला ट्रैक एलो फड़ो।

0: हरी वेलकम बैक कहेंगे जनाब और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। वैसे आज क्यू शीट में मोस्टली मैंने नए गाने ही चलाए और आप लोगों ने बड़े पसंद किए, तो क्यों ना फ्राइडे का दिन ही रख लें हम, जिसमें नए सिंगर्स के ट्रैक्स जो हैं हम चलाएंगे। क्या कहते हैं आप जरा बताइएगा। अच्छा भाई, उन्होंने कहा कि वैसे इस सिंगर का दूसरा एक और भी गाना है, वो भी हमारे क्यू शीट में है, वो भी चला देंगे हम, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और इसका नाम है अशर वजाहत। और अच्छा भाई, टॉपिक के हवाले से किसी ने गाल लेनी की थी यार, एक ही गाल हुई यार। और सुने हो, हाय हाय, सलीम अमन कह रहे हैं कि 3636 का मैसेज जो है बड़ा महंगा पड़ रहा है, और हमारे एफएम के लिसनर्स कितने कंजूस हो गए हैं। सलीम का सलाम का जवाब तो दे दो, खास तौर पर संजीदा आप सलीम मेमन, बात तो यार अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप मोहब्बतें देखें। मैं ज्यादातर जो है यकीन मानिए कि 3636 पर मैसेज पर मेरा इंफिसास ज्यादा इसी वजह से होता है कि आपकी मोहब्बतें हैं जो आप लोग जिस तरह मुझे मैसेजेस करते रहते हैं एक के बाद एक, लव यू। और अमीन कह रहे हैं कि उमिर बाब जी सलाम, चुड़ैल सिस्टर, संजू सिस्टर और तमाम एफएम 100 की फैमिली को खूबसूरत सा सलाम। उमिर बाब सुन रही हैं शो, बिल्कुल सुन रही हैं जनाब, उनको ट्रैक तो हमने डेडिकेट अभी करने हैं, आप क्यों परेशान हैं, हमें उनको पहले बोले हैं कि हम आपको डेडिकेट करेंगे। अच्छा उमिर बाब कह रहे हैं सलाम, मेरा SMS नहीं पढ़ता, अमीन को सलाम। मैं आपके सारे SMS तो पढ़े, अरे क्या बात करते हैं, हम दोबारा चेक करते हैं, हमारे पास टाइम है। गुल अफशी गायब हो गई है और मेरे सामने उनका मैसेज आया इसलिए उनका नाम ले दिया मैंने। उमिर बाब हम आपके सारे मैसेज पढ़े हैं। हम आपके सारे मैसेज पढ़े हैं, 1 to all देखा है हमने, चेक किए हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। और संजू कह रही हैं कि फ्राइडे का दिन जबरदस्त रहेगा, सलीम भाई जीते रहें, सलीम मेमन भाई लिखा करें।
1: ए सलीम मेमन भाई जीते रहे आप।
0: पाकिस्तान प्यारा मुल्क है, घूमने चलते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। चलो बच्चा तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, अम्मी अब्बू को साथ रखना, तुम्हें मैं रस्सी बांध कर अपने साथ साथ रखूंगा। हाथ पे रस्सी बांधूंगा बकरे की तरह, नहीं कैसे कहूं, जबरदस्त आपकी पहचान, कुछ सॉन्ग्स हैं, तुम हम तो तुम्हारे हैं, नखरे दिखाए हम तो तुम्हारे हैं। अच्छा इस गाने के बोल रही हैं, मुश्क सही जा रही हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ भाई, सलीम मेमन भाई लिख दिया संजू ने और कह रही है सलाम। सलीम मेमन साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे जरा बताइएगा। इसी बात पर हम चलते हैं एक गाने की जानब और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे। यार फास्ट ट्रैक मेरा चलाने का मूड नहीं हो रहा, पुराने ट्रैक। हमने असल में उमिर रुबाब को गाना डेडिकेट करने हैं, तो उमिर रुबाब को जब गाना डेडिकेट करने हैं तो जाहिर है फिर क्यों ना, यानी कि समझ रहे हैं ना, पर्शियन गाना हो जाए, ठीक है। मैं ये देखता हूँ ये गाना अगर अच्छा हुआ तो चलाऊंगा।

वेलकम बैक आएंगे सोने। और अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं ये उमर रुबाब को हम डेडिकेट करेंगे अमीन की जानिब से और अपनी जानिब से, यानी कि समझ रही है ना उमर रुबाब। हम आपको ये गाना फारसी गाना चलाए हैं, एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और जहां आप गाना उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा उमिर बाप को। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है भाई। और अमीन कह रहे हैं वाओ ब्यूटीफुल फारसी सॉन्ग प्ले नदीम भाई मुझे, वालेकुम अस्सलाम। और उमिर बाप मैं संजू को सलाम बोलती हूँ नदीम, थाले मनम जानो मन जिगर मालूम था आप परेशान सॉन्ग पर्शियन सॉन्ग लगाता है। हाय अल्लाह जी, आपके लिए पर्शियन लगाता हूँ हमेशा, और आपके लिए कभी कभी पंजाबी भी चलाता हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे पता है आपको दोनों पसंद है। अच्छा जी, संजू के हवाले से ये कुछ कह रही हैं। संजू आपको याद किए हैं नहीं किए हैं? आप संजू को याद किए हैं। और अमीन भाई और प्यारी रुबाब के लिए प्यार भरी दुआएं भेजी हैं संजू आपको, पता है आपको। अच्छा भी मुश्किल थी हैं, छोड़कर कहीं नहीं जाती, रस्सी की जरूरत नहीं होगी सच्ची में, तो मैं गले में रस्सी थोड़ी बांधूंगा, हाथ में बांधूंगा। नींद में हूँ मासूम सी ख्वाहिश, आपकी आवाज में फिर तंग करूंगी, नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है तुम्हें? आजकल के बच्चे तो मतलब लड़कियां जो हैं वो तो जागती रहती हैं। सलाम नदीम भाई, बहुत दिन बाद आपका शो सुन रहा हूँ भाई। मेहरुल्ला साहब, यार इतनी गर्मी पड़ रही है मेहरुल्ला भाई, आप तो ऐसी जबरदस्त मौसम की अपडेट देते थे हमें, और अब ये गर्मी कब तक यार थोड़ी सी कम होगी जरा ये तो बता दो, यानी कि समझ रहे ना। अच्छा जनाब, अब हम एक और ट्रैक के जरिए जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और ये आवाज जो है खुसूसी तौर पर ये सिंगर जो है ये हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ को भी बड़ा पसंद है, और मेरे बहुत सारे लिसनर्स को पसंद है। काविश हैं जी, यानी कि जाफर जैदी साहब, उनकी आवाज और क्यूबी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। एलो फड़ो

वेलकम बैक। जा रहा हूँ मैं और वो भी जा रही है और हम भी थोड़ी देर में चले गए। आई होप यू लाइक दिस ट्रैक। अमीन कह रहे हैं सिस्टर चुड़ैल से पूछें आज कितनों को डराया। और वालेकुम अस्सलाम कह दिया करें बहना। और संजू बहना खुश रहें, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आमीन। अच्छा जी, और अल्लो जी बकौल आपके चुड़ैल और हमारे बकौल चोको चिंचन, आज कहीं गई थी इसलिए थक गई हूँ। आम यानी कि थकी हुई है, गर्मी बहुत थी, सोई भी नहीं थी। अच्छा जी, काविश इनको भी बहुत पसंद है भाई, मिठादसी। आवाज मिठादसी होती है। क्या बात है यार, क्या लफ्ज चुने तुमने, मतलब मीठी उदासी होती है इनकी आवाज में। मैं बहुत उदास होती हूँ, क्यों ही ग्रेट सिंगर खूबसूरत, बहुत उदास सॉन्ग शायरी है। तुम उदास नहीं हो, सो जाओ। ऐसा लगता है किसी की कमी है और वो जिंदगी में नहीं है, शायरी उदास कर देने वाली है। हाँ यार, क्या बात है, आप कितनी समझदार हो गई हो मेरे साथ रह के। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम अमीन लाला। अमीन भाई आपको जवाब आ गया। और जॉनम मन नी जाना चाहते जिगर, आप सब लोगों को मालूम, दुआ करो आपको और अयास को खास कर। बिल्कुल जनाब, उम्मीद रुबाब के लिए ढेरों दुआएं करनी है आपने, ढेर सारी। भाई हमारे मेहरुल्ला साहब कह रहे हैं 14 जून से गर्मी कम होगी, मौसम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह भाई, आमीन आमीन यार। मगर कल कराची बहुत गर्मी होगी, दो दिन है गर्मी, ओए होए। चलो भाई, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब जो है जी, मुश्क पूछ रही हैं, सिंगर लिखा था क्यूबी, क्यूबी से मुराद कुरतुल्लैन बलोच नाम है इनका, इनको क्यूबी कहते हैं, इनका निकनेम है। और जाफर जैदी और क्यूबी दोनों ने मिलकर गाया था ये। एंड जनाब, अब जो है वो आपसे इजाजत भी चाहनी है, उससे पहले कुछ बातचीत भी हो जाए दखल अंदाजी के हवाले से। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से सिर्फ यही कहा जी कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी, बस और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दखल अंदाजी किसी ना किसी तरीके से, मुदाखलत कह लें कि हमारी जिंदगियों में होती है। मेरा अपना एक तजजिया, एक तजर्बा है, दखल अंदाजी और मुदाखलत जो है वो अगर आपकी जिंदगी में ना होना तो जिंदगी में, यकीन मानिए, बहुत बेरंगी रहेगी। दखल अंदाजी और मुदाखलत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हम लोगों में, मैंने आजकल के माशरे के हवाले से ये मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं कि पहले दौर के, आज से 3-4 डिकेड्स पहले, यानी कि आज से 25-30 साल पहले तक की जो जनरेशन थी, वो मुदाखलत उनके मामलात में, उनकी जिंदगियों में, उनके बड़ों की, खुसूसी तौर पर बड़ों की ही होती है ज्यादातर मुदाखलत, छोटों को तो इतना ज्यादा जो है भाव इंसान नहीं देता, सुन लेते हैं मशवरे। हम तो छोटों के मशवरे भी नहीं सुनते, जो कि गलत बात है। छोटों से भी, अपनी उम्र से छोटे जो हैं, आपसे कम तजर्बा रखने वाले लोग जो हैं, उनसे भी मशवरा जरूर लेना चाहिए। तो मदाखलत के हवाले से या दखल अंदाजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि पहले जो है बड़े जो होते थे आपसे, वो आपके फैसलों में मदाखलत जरूर करते थे, ठीक है ना, चाहे वो शादी के हवाले से हो, जिंदगी को आगे बढ़ने के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, रिश्तों के हवाले से हो। तो लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चीज हमारी जिंदगियों में कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त और सबर नहीं था। बाप अगर किसी चीज का मशवरा दे रहा है तो बच्चे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, बाप मां की बात अलग है, हमारे चचा जो हैं, हमारे जो ताया हैं, हमारे जो मामू हैं, हमारी खाला जो हैं, ये भी एक रिश्ते हैं और इनका एक एहतराम होता है, ठीक है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग हैं। मैं अच्छाई के हवाले से बात कर रहा हूं, ठीक, मैं बुराई के हवाले से नहीं। मुदाखलत और दखल अंदाजी नेगेटिव जो है वो हमेशा ही गलत है,
ٹھیک ہے نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارے اندر یہ برداشت کم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی پازیٹو ہماری زندگی میں مداخلت کر رہا ہے پازیٹیولی, ہمارے قریبی رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ کسی اور کو ہم اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہمارے دوست احباب ہوں یا کوئی پڑوسی ہوں, سن لیتے ہیں مگر وہ بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, مداخلت نہیں کر رہے ہوتے یا دخل اندازی نہیں کر رہے ہوتے. تو دخل اندازی یا مداخلت صرف اپنے رشتے ہی کرتے ہیں. تو اگر کوئی پازیٹو آپ کے مداخلت کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز ہے, سن لینا چاہیے. فیصلہ انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال دیا ہے. بچوں میں برداشت ہی نہیں ہے, وہ اپنے بڑوں کی بات ہی نہیں سنتے ہیں. اور بڑوں سے مراد یہ کہ چچا ہو گئے یا تایا ہو گئے یا رشتے کے دادا ہو گئے, نانا ہو گئے, رشتوں کے بھی ہوتے ہیں نا, ایک تو سگے دادا سگے نانا ہوتے ہیں اور ویسے بھی. تو اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا صبر و تحمل بھی لے کر آئیے. سننے کی جو ہے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کی تھی, ہمارے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے, یہ طاقت ہم کھو چکے ہیں یا برداشت نہیں ہے. سننے کا مطلب وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی سنیں, ہم زیادہ تر اپنی سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بس, اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے, دوسرے کی سننے کی ہمارے اندر وہ برداشت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے اندر یہ مادہ پیدا کیجئے کہ آپ دوسروں کی بھی سنیں, ٹھیک ہے نا. کڑوی باتوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, پازیٹو باتوں کی بات کر رہا ہوں, کڑوی باتیں تو نہیں سننی چاہیے. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا, یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانی تھی, اور اب آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہنی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ہماری ہوگی جناب کل انشاءاللہ سلیپ لیس نائٹ میں. جاتے جاتے ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹریک مرتضی قزلباش کا ہی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, کافی پاپولر گانا ہے. اور آج کے شو میں سیم ویسا ہی ہو گیا, ہر فرائیڈے کو اب ہم شو کریں گے, ہمارے نئے سنگرز جو ہیں ان کے ٹریکس جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے, اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئے. اور اگر آپ کی بھی کوئی پسند ہے, کوئی فرمائش ہے, تو آپ وہ کیجئے جو نئے سنگرز کی ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة